दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, रबीउल सानी की 4 और सितंबर की 17 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी, सरमायाकारी के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन इकदामात कर रही है। पाकिस्तान ने अपने खुसूसी इक्तिसादी जोन में भारतीय बहरी इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। वज़ीरे बहरी उमूर ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात की मुसाबकती सलाहियत को मुतासिर करने वाली कस्टम्स की रुकावटों को दूर करने के इकदामात पर जोर दिया है। माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर ने मौसमियाती आफात से निमटने के लिए इलाकाई तआवुन में इजाफे पर जोर दिया है। मिस्र के सदर ने फलस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक इसराइली मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। रात वम्जली में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को चौथे और आखिरी मैच में हराकर 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की वनडे सीरीज 3-1 से जीत ली। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी को सहूलियात की फराहमी, सरमायाकारी के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन इकदामात कर रही है। वो इस्लामाबाद में पाक जापान ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी आसिफ महमूद से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत के फरोग, नई बैनुल अक्वामी मंडियों तक रसाई बढ़ाने और बरामद कुनिंदगान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम पर जोर दिया। मुलाकात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के इकदाम और मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके खुसूसी इक्तिसादी जोन में भारतीय बहरिया के एक जहाज की जानिब से इंतहाई इश्तियाल अंगेज और नाकाबिल कबूल इकदाम पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 26 के दौरान भारतीय जहाज ने पाकिस्तानी बहरी जहाज के इंतहाई करीब जारहाना अंदाज में नकलो हरकत की, जिसके नतीजे में दोनों जहाजों के दरमियान टकराव हुआ। ये वाकया बैनुल अक्वामी कानून फौजी मशकों और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में 1991 के दो तरफा माहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा पैदा हुआ। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात की मुसाबकती सलाहियत को मुतासिर करने वाली बंदरगाहों और कस्टम्स की रुकावटों के हल के लिए फौरी और अमली इकदामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो इस्लामाबाद में बंदरगाहों पर टेक्सटाइल बरामद कुनिंदगान को दरपेश मसाइल के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे। विफाकी वजीर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि क्लियरेंस के अमल को बेहतर बनाने के लिए बरामद कुनिंदगान, बंदरगाहों के हुकाम, कस्टम्स, PSW और शिपिंग लाइन्स के साथ करीबी राबते में काम करें। मौसमियाती तब्दीलियों माहौलियाती राबते के वजीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती आफात, खुसूसन ग्लेशियाई झीलों के फटने से आने वाले सैलाब से निमटने के लिए इलाकाई तआवुन में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। वो इस्लामाबाद में नेपाल की सफीर रेता धतियाल से गुफ्तगू कर रहे थे। विफाकी वजीर ने पेश की इतला का निज़ाम तैयार करने के लिए खित्ते के बालाई और ज़ेनी इलाकों के ममालिक के दरमियान तआवुन पर जोर दिया। उन्होंने सैलाब और मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली दीगर आफात के तबाहकुन असरात से निमटने के लिए नेपाल को पाकिस्तान की तकनीकी मुआवनत की भी पेशकश की। नुमाया आलमी कंपनियों ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। ये दिलचस्पी इन कंपनियों के नुमाइंदों की इस्लामाबाद में वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अलग अलग मुलाकातों के दौरान जाहिर की गई। वजीर ने कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी के इजहार का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को माहौल दोस्त और अर्जा तवानाई की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। वजीरे पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जोर दिया है कि सियासी इख्तलाफात के हल के लिए हुकूमत के साथ मुजाकरात की राह इख्तियार करें। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के जरिए अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करना सियासी मसाइल के हल का जमहूरी तरीका नहीं है। वज़ीरे कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ज़रई तहक़ीक और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाकिस्तान और कोरिया के तआवुन से मुल्क में बीमारियों से पाक और मयारी आलू के बीज मकामी सतह पर पैदा करने की सलाहियत बढ़ रही है। वो इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तस्दीकशुदा आलू के बीज की पैदावार से मुतालिक पाकिस्तान कोरिया मुश्तरका मंसूबे के इजलास से खिताब कर रहे थे। विफाकी वजीर ने कहा कि ये इकदाम आलू के शोबे के लिए मकामी सतह पर बीज के पायदार निज़ाम की तैयारी टेक्नोलॉजीज और मालूमात के तबादले के शोबों में मजीद तआवुन के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। समंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने हकीकी लेबर मार्केट की तलब की बुनियाद पर बावकार नकल मकानी के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो इस्लामाबाद में नकल मकानी के कानूनी रास्तों से मुतालिक बुडापेस्ट प्रोसेस के मौजूदाती वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब कर रहे थे। वजीर ने पाकिस्तानी कारकुनों के लिए यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान टैलेंट पार्टनरशिप को उजागर किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीरे कौमी वर्सा और सकाफत औरंगज़ेब खान खिची ने पाकिस्तान के सकाफती वर्से तवरवायती फ़नून दस्तकारी और तख्लीकी मईशत में ख़वातीन के किरदार को उजागर किया है। वो कारोबारी ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के पायदार निज़ाम के हवाले से कोयटा में मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। विफाकी वजीर ने ख़वातीन की सलाहियतों को बुरेकार लाने और उनकी सकाफती मालूमात को पायदार माशी सरगर्मियों में तब्दील करने के लिए मौके फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए चैलेंज से मौसर तौर पर निमटने के लिए मजबूत पार्लिमानी क़यादत जमहूरी एहतसाब और बैनुल अक्वामी तआवुन पर जोर दिया है। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के 69वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुताबकत पैदा करने के इकदाम को मुनसिफाना माली मुआवनत और बैनुल अक्वामी तआवुन के जरिए ही मौसर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन और बैनुल अक्वामी तंजीम हरमैन शरीफैन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने ऐलान किया है कि मक्कतुल मुकरमा को निशाना बनाने की कोशिश के खिलाफ मुल्क भर में जुमे को यौम मजम्मत मनाया जाएगा। लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम से अपील की कि वह जुमे के खुतबात में इन हमलों की मजम्मत करें। भारतीय लोकसभा में कायदे इस पर इख्तलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की जेर क्यादत मोदी हुकूमत ने अमरीकी कंपनियों को भारी मुनाफा कमाने की इजाज़त देकर अमरीका के सामने घुटने टेक दिए हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने फलस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक इसराइली मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। वो काहिरा में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू कर रहे थे जो मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। फलस्तीनी सदर ने मसला फलस्तीन पर मिस्र के मुस्तकिल मौकिफ को सराहा। मारूफ अदाकार मुसन्निफ और शायर इफ्तखार कैसर की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने 40 साल से जायद अरसे तक पाकिस्तान टेलीविजन के उर्दू पश्तो और हिंदको ड्रामों में अदाकारी की और उन्हें सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इफ्तखार कैसर तवील अलालत के बाद 2017 में आज के रोज़ पिशावर में इंतकाल कर गए थे। रात वम्सली में खेले गए 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की वनडे सीरीज के चौथे और आखिरी एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 200 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-1 से जीत ली। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 350 रन बनाए। 351 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 20.4 ओवर्स में 150 रन बनाकर आउट हो गई। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज्यालाबारी भी मतवक्के है। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 23, कराची 29, पिशावर 24, कोयटा 20, गिलगित 17, मरी 13 और मुजफ्फराबाद 19 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुजवी अबरालूद रहने के साथ और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत श्रीनगर और अनंतनाग 15, जम्मू 22, लेह 4, पुलवामा और बारामूला 14 और शुपियां 13 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: From analog roots to digital perfection. 28 years of pure sound. Local stories, voices.

0: From analog roots to digital perfection. 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101. The voice you trust.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

0: खोल सारा दिन गाना सुनता। पसंद रसूख हुए
1: दादाजी दादा सुन पेजने दाखो अली जफर दे
0: होगा भाई। हमने गाना वाला बड़ा देखा, हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान मिलेगा।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: From analog roots to digital perfection.

0: From analog roots to digital perfection. 28 years of sound, local stories, and non-stop music. FM 101. The voice you trust.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

101 FM. This is FM 101.

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: वेल बढ़ते हैं न्यूज ब्रेक की जानब और इसके बाद हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए एफएम 101.
1: दिस इज 101% प्योर. यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101 एफ.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: Dax. In the Dax.
1: Zeus.
0: Yeah.

This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो.
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर. एक दिन, एक घंटा.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो

और चुप हो गया, मैं थक सा गया। और चुप हो गया, मैं थक सा गया। और चुप हो गया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे अस्सलाम वालेकुम सोने पैन प्राओ ते मेरे बुजुर्गो प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे लेके तुहाडी मेज़बान तुहाडी पैन साइमा तुहाडी खिदमत विच हाजिर है पैन प्राओ मैनू पता है कि तुसी मैनू बड़ी बेकरारी नाल उड़ीक रहे हुंदे हो क्योंकि मैं तुहाडी मुलाकात मुल्क दे बहुत ही मशहूर ते अपने फन विच बहुत ही सियाने तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल करवानी आ सोने पैन प्राओ हमेशा वांगो मैं आज भी तुहाडी मुलाकात सुलेमान साहब नाल जरूर करवावांगी पर तुहानू थोड़ा जिहा इंतजार करना पवेगा क्योंकि पहला मैं तुहानू अपना पता लिखवावांगी सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर फोन नंबर 042-377-27160 यानी 042-377-27160 मोबाइल नंबर है 03-400-414-2608 यानी 03-400-2608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhanalhr@gmail.com जी सुने भैन भ्राओ तुसा सुनिया होवेगा कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया जी भैन भ्राओ उडीकां मुक गईयां ते मिलने आ गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल सुलेमान साहब हुण तुसी दसो कि की कवां खुश आमदीद जी आया नू के वेलकम
3: सहमा जी तुसी भावे कुछ भी ना आखो क्योंकि मैं हुण प्रोग्राम विच आ ही गया ते अपने भैन भरावां दी खिदमत करके जावांगा
2: जी ते फिर मैं यही कहांगी कि तुहाडे आण दा बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब मैनूं ईमेल्स ते एसएमएस पढ़ पढ़ अंदाज़ा हो गया है कि तुहाडे कोल विगड़ियां तिगड़ियां बीमारियां दे केसिस ज्यादा आंदे ने
3: अच्छा
2: सुलेमान साहब वो मिसाल मशहूर है ना कि डंडा पीर विगड़े तिगड़ियां दा ठीक है ते सुलेमान साहब तुहाडे कोल विगड़ियां तिगड़ियां बीमारियां वास्ते केड़ा डंडा है जिहदे नाल बीमारियां ठीक हो जांदियां ने
3: सहमा जी तुहानूं ते अदीब या राइटर होना चाहीदा सी क्या खूब मिसाल बोली है
2: बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी
3: बिल्कुल मौके दे मुताबिक सहमा जी विगड़ियां तिगड़ियां बीमारियां दा इक्को ही हल है वह है कि मुकम्मल तशखीस अच्छी दवाई ते बुनियादी बीमारी दा खोज जदों ये चीज़ां होणगियां ते पुरानी तो पुरानी तो विगड़ी बीमारी थोड़े अरसे विच ही ठीक हो जाएगी
2: जी बिल्कुल ठीक सुलेमान साहब ईमेल भी बहुत विगड़ी हुई है
3: अच्छा
2: मेरा मतलब है कि बीमारी विगड़ी हुई है सुलेमान साहब साजिद बशीर साहब लिखते ने कि जनाब मैं बहुत स्मार्ट ते हैंडसम मरीज हाँ
3: अच्छा।
2: ये कहंदे ने कि मैनू वेख के कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि इन्ना हैंडसम स्मार्ट बंदा अंदरों बिल्कुल खाली है सुलेमान साहब मेरी परेशानी नु तुसी मेरी तहरीर तो समझ गए होगे मजीद मैं की लिखा
3: साजिद भाई मैं ते तुहाडी बीमारी दी तह तक ही पहुंच गया वा क्योंकि मेरे कोल ते इहो जे स्मार्ट ते हैंडसम मरीज आंदे ही रहंदे ने पर सोहणे रब दी मेहरबानी है कि सोहना रब उन्हां नूं अंदरों भी स्मार्ट ते हैंडसम बना दिंदा है साजिद भाई मैं तुहाडी परेशानी तुहाडे जज्बात ते तुहाडी कैफियत नूं चंगी तरह समझना वा पर तुसी फिक्र ना करो सोहणे रब दी मेहरबानी नाल इह सारी मुश्किल

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी हुकूमत ने ईंधन की बचत और कई किफायतचारी इकदामात का ऐलान किया है जो फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगे। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुख्तलिफ शोबों में कारोबार और तजारत के नए मौाक तलाश करने का अज़्म ज़ाहिर किया है।
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाए दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: जी वेलकम बैक जी। ऑलराइट वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:48 एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और जिसमें हम बात करने वाले हैं जी जितने कलर्स पे हमने बात की है। आप हमसे किसी भी कलर के साथ आप कंपैटिबिलिटी पूछ लें, यू कैन आस्क अबाउट एनी कलर एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू विल डेफिनेटली टेल यू। एंड कनेक्ट करने के लिए आपके पास नंबर है जी 0421100101। और मेरे सामने इस वक्त चार साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें। एक साहब कहते हैं मेरी उन्होंने कॉल करनी है, अच्छी बात है, अगर ज़्यादा कॉल्स लें तो उनकी भी मिल जाए। मैंने कहा चलें ऐसे कर लेते हैं, है आपकी उन्होंने कॉल मेरे शो में आएगी, तेरा मैं माइक बंद कर दूंगा, गल मैं कर लूंगा, माफी निश्ता,
1: फिर वो आपको पर्सनल कॉल देंगे।
0: माइक ऑन है तुम्हारा, नहीं ऐसे नहीं चाहिए, फिर मैं तंग होता हूँ। एनीवेज इसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें स्पेस ने अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। और मेरी लाइव इस वक्त ऑन हो चुकी है जी, आप लाइव पे भी आ सकते हैं। आप सर्च करें RJ DOX और वहाँ पे लाइव है फेसबुक पे, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। थकावट का एहसास आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी भी मुंडे भी दिखाना था ना, वो भी थके हैं। हाँ जी, क्या अब बात करेंगे हम आज? अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: सर मैं साजिदा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, करें
2: क्या है आपका, कैसे हैं? अच्छा। और आपका सफर कैसा रहा?
0: बहुत अच्छा रहा।
2: हाँ जी, वो तो आपको पता चल रहा है जैसे आप नींद से उठ के बात कर रहे हो।
0: हाँ नहीं, सही कह रही हैं आप, शुक्र है आपको नजर नहीं आ रहा।
2: नहीं, महसूस तो आपके आवाज से हो रहा है जैसे, और ये जो आपके साथ चार आपके वो बैठे हुए दोस्त आरजे, इनको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: और ये सब उदास क्यों है आज?
0: उदास नहीं है, सुत्ता पे बंदा उठे ना एनजी होता है,
3: हम थके हुए हैं।
2: अच्छा चले, आपके बहुत

0: बहुत शुक्रिया, फिर भी शो करने आ गए।
1: आने जाहर है जी।
0: हाँ जी,
1: मजबूरी सी हो, प्रोड्यूसर की कॉल आई थी, कल भी आपने शो स्किप किया, आज आ रहे हैं, मैं कभी आ रहे हैं।
0: अच्छा, वाह, आप आ गए आज, सब कल आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और ये
1: मैनू तो एक मैसेज नहीं आया, मैं झूठ बोल दे रहा हूं।
0: नहीं
1: बता तो फिर, चलता रहा मेरे को फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई चक्कर ही कोई नहीं।
0: रहमान से पूछना, सब पूछ रहे थे और वो कह रहे थे कल आने।
1: और रहमान को कर रहे थे, जिन्हों करना चाहिए था उन्हों करता।
2: कोई सर, ये कौन सा मिस करना होता है जिसमें हमें पता ही नहीं?
3: ये सिर्फ रस्मी बातें।
1: वो मतलब वो स्लॉट अच्छा आपको मिल गई, अच्छा कब आएंगे वो, कि वो अंदरों निकले होता उन्हों कहना ना ही आए, लेकिन वो तो कह रहे होते अच्छा कब आएंगे वो।
0: आपको चाहिए था ये रेडियो का नंबर अपने साथ ले जाते, आपको पता चलता कौन कौन मैसेज कर रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन आपका आपको ज्यादा मिस कर रहा है।
1: अच्छा अच्छा, चले अगली दफा ऐसे ही करेंगे
0: जी। और मैंने ना आपसे कहा था रेड कलर में, आप उसके बारे में बता दीजिए
1: जी।
0: मैं रेड बहुत ज्यादा पहनती हूँ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: और मुझे पसंद है रेड, ब्लैक पसंद है, लेकिन रेड के बारे में ना आप जरा ज्यादा मालूम बता दे।
1: आप रेड कलर ज्यादा पसंद करती हैं, साथ मेकअप भी करती हैं, मेकअप के बगैर पहनती हैं?
0: हाँ जी, पूरी मैचिंग मेकअप सब कुछ।
1: तो कोई बिंदिया, कोई टिक्का, कोई कांटे, कुछ चूड़ियां,
0: वो कोई हार तो फिर पहना जाता है घर में? नहीं।
1: आपको रेड कलर की लाल सुई लिपस्टिक लगाने का मजा आता है?
0: मैं तो लगाती वही हूँ, और मेरे घर वाले पता क्या कहते हैं, जब तुम मरोगे ना तुम्हारा रेड कफन होगा, इतना मुझे पसंद है।
1: और लाल कलर का रेड, रेड सही ब्लश भी लगाती हैं, सही रेड। हेलो,
0: हाँ जी,
1: रेड कलर का ब्लश है, ऐसे चीक्स टमाटर की तरह लाल करने का अच्छा लगता है आपको?
0: टमाटर करने का क्या?
1: मैं क्या, चीक्स पे ब्लश भी लगाती हैं?
0: नहीं, वो कपड़ों के हिसाब से या मेकअप के हिसाब से होता है।
3: नहीं तो फिर आपको रेड कैसे पसंद हुआ?
0: रेड यानी के रेड मेकअप ही करती हूँ।
2: अच्छा, रेड मेकअप मतलब क्या क्या चीजें होती हैं उसमें?
0: लिपस्टिक तो रेड लगाती हूँ, और बाकी भी करना हो तो रेड कर लेती हूँ।
1: आँखें लाल, मुंह लाल, गलियां लाल,
3: कपड़े लाल,
1: लाल
0: जी,
1: परी नु देख तो बंदा डर नहीं जाता आएगा। लालो लाल, इतना ही लाल, कैसे कैसे कर लेते हैं
0: लोग, देख के खुश हो जाते हैं, कहते लाल परी आ गई।
2: फिर वो लेकिन लाल रंग तो गुस्से की भी निशानी दिखाता है, अग्रेशन और एंगर, तो आपकी बातों से लगता है आपको, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं होगा?
1: नहीं, इनकी बातें बताती हैं, बहुत गुस्सा आता है।
2: ये इनसे पूछ लेते हैं,
1: मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, मुझे गुस्सा ना, बस जो बात गलत हो उस पे आता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा मैं हंसती
2: हूं। सर ये तो रस्मी बात है ना, ये तो सब बोलते हैं कि मुझे गलत बात,
1: बातों से लग रहा है इन्हें गुस्सा जो है ना, सिर्फ वो उन लोगों पे आता है जो क्लोज है, बाकियों के सामने बड़ा अच्छा बन के रहती है ना। हाँ सही कह रहे हैं, रेड बार रेड कलर का मतलब है, आप कॉल बंद करें, मैं अभी बता रहा हूँ, आपने सुनते रहना, ठीक है? ओके,
0: एक गाना भी लगा देंगे
1: जी। जी बताएं।
0: हाँ, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये
2: क्या बात है, क्या बात है,
0: ये मूवी का गाना है, हम आपके,
2: बट ठीक है गाना लगा देते हैं।
1: हाँ गाना ढूंढ,
0: हम आपके कौन पता नहीं, और ये आप ना सारे मेरे दोस्तों का नाम लगा दे,
1: चले ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आज अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
0: ठीक है, सबके नाम लगा दे, अल्लाह हाफिज़, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा
1: जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। क्या बात है, रेड कलर पे बात कर रही है, रेड कलर के बारे में पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई कि बड़े पैशनेट किस्म के लोग होते हैं और इन्हें पावर का इस्तेमाल बड़ा पसंद होता है, और फिर डोमिनेट करना पसंद करते हैं, एनर्जी लेवल इनका अच्छा होता है, करेजियस होते हैं, लेकिन अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, और इम्पेशेंट भी होते हैं, जेलस भी बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, और डोमिनेट करना पसंद होता है इन्हें, रेड कलर वाले।
2: बड़ी ईद के दिनों में ये कलर नहीं पहनना चाहिए, जानवरों को भी गुस्सा आता देख कई सारे।
1: मैं सुनिया ही होया है आप पे कभी किसी जानवर ने गुस्सा निकाला आके डांटना शुरू किया है, ओए तू लाल रंग को पाक फेर रहे हैं,
2: नहीं सारे पाए
1: असी जड़ा काले कपड़े पाए ने चिट्टे पाए ने, तू कल्ला ही जड़ा बकरा साडे च लाल पाई फेर रहे हैं, कभी किसी ने आके तुम्हें डांटा
2: नहीं? वो वैसे ही माना जाता है कि रेड कलर को देख के वो ऑफेंड होते हैं जानवर।
1: अगली बड़ी ईद पे ना तुमने पूछ के बताना मुझे।
2: चलो
1: ठीक है,
2: कोशिश करूंगा
3: किसी बड़े जानवर से पूछ के बताना।
2: आजकल मसरूफ।
1: अच्छा जी, मरीना बिलाल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज जी, लाइव से मैसेज पढ़ रहा हूँ। फिरोज आलम है, सलाम किया, वालेकुम सलाम, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं हमें। क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत जगह से सुन रहे हैं आप, और शो इज़ ऑलवेज गुड, शो इज़ गोइंग ऑसम, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। और आपने सेहत तंदरुस्ती की दुआ दी, अल्लाह पाक आपको हर मैदान में कामयाब कामरानी अता करे, थैंक यू वेरी मच। आते हुए मेरे भाई ने ना वहाँ से खजूरें लेके आनी है, जड़ा जड़ा उतो करदा सारे नु कही जा रहे हैं, यकीन करो कोई भी नहीं लेके आया अभी तक,
4: अभी तक कोई आई भी है
1: यार, ले आना यार, तुम आओगे ना भाई ले आना, हमेशा की तरह खूबसूरत एंट्री, थैंक यू वेरी मच फिरोज भाई। और मरीना बिलाल कहती हैं आपके साथ जो आरजेस हैं उनको भी सलाम और दुआ।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: फरा अफजाल हैं कराची से सुन रही हैं हमें, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, गुड टू सी यू, थैंक्स आने के लिए, कोई बात नहीं, इतनी छोटी मोटी बंदा फिर मेहरबानियाँ कर ही देता है जी। रॉयल ब्लू के बारे में पूछ रही है, कितनी दफ़ा पूछेंगी आपको एक बात बार बार पूछते हुए अजीब नहीं लगता? वकास हैं लिसनिंग फ्रॉम वॉक एंड, थैंक यू वेरी मच जी। और रॉयल ब्लू के बारे में बता लेना। तारिक मिनहास हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुझे सफ़ेद रंग पसंद है, ओके सर बिल्कुल बताते हैं जी। और नमान नज़ीर हैं, हेलो भाई, हाय आई एम लाडो रानी, ले मुंडिया के आई डी से थलो कुड़ियाँ निकल आंदी हैं यार, सारी उम्र जब हम यूनिवर्सिटी में थे हमेशा ढूंढते रहे किसी आई डी थले कुड़ी निकल आए, कुड़ियों के आई डी को मैसेज करने थलो मुंडा निकल आंदा सी।
2: सर ये कितनी बार हो गया आपके साथ?
1: तकरीबन अगर काउंट करूँ ऑनेस्टली 3-4 दफा तो हुआ है।
2: तो फिर आपका क्या क्या एक्सप्रेशंस क्या होते थे?
1: उसके बाद मैं डर गया। उसके बाद मैं कहा ये काम खतरनाक है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे यकीन हो गया मेरी क्लास के बीच में कोई ना कोई पंगा कर रहा
2: है। सर होता है ऐसे, ये मेरे साथ भी हो गया।
1: हाँ,
2: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे बाद में,
1: नहीं मैंने भी बात कोई नहीं
2: शर्मिंदगी
1: होती थी, उन्होंने छड़ना नहीं सी, लेकिन दरमियान में पता चल गया था यार ये बात तो लड़की नहीं कर सकती।
2: सर लेकिन मुझे जैसे मतलब कोई फेक आईडी से मैसेज करता है, कोई लड़की आईडी से मैसेज करती है फेक आईडी से, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि ये हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई लड़की मैसेज करे, फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये फेक है।
1: हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जलसे में आया जी शहीर साहब, बड़ी मेहरबानी, जलसे के हमारे इस वक्त 5 स्पीकर हो चुके हैं जी जलसे में,
3: एक देख और कर लो।
1: जी कल आप कहाँ थे? मैं लाडो रानी नहीं था लाहौर में, लव योर शो सो मच, और बहुत सारी दुआएं दी आपने, सलाम दिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा ना बताएं आप भी यही डिस्कस कर रहे हैं तो यही पूछ लिया, अच्छा ठीक है, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। हाँ जी रॉयल ब्लू के बारे में बताएं, बल्कि चेक करें खबरें आ रही हैं जी, खबरें हैं जी।
5: हुकूमत ने ईंधन की बचत और कई किफायतशारी इकदामात का ऐलान किया है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में पाकिस्तान के वफद की क़यादत करेंगे।
6: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल
1: All right, है वेलकम बैक। आवाज ओ यार मैं भी तो सोना सी यार, मैं ऑफिस गया वापस आके फिर थोड़ा सो लिया, अभी कोई 1.5 घंटा सो के फिर मैं आ गया, तो इतना तो फिर बनता है ना जी। हिरा फातमा ने इस्लाम किया, सर वालेकुम सलाम, आज भी ना आई है इस्लाम के बाद डॉक्स, वालेकुम सलाम, चले थोड़ा जा अच्छा अच्छा एक्टिव एक्टिव करते हैं। मुझे रोने वाला गाना बताओ जिससे रोने की फील ना आए,
2: रोने की फील ना आए।
1: हाँ
3: آئے کہ نہ آئے
1: نہ آئے نہ آئے
4: یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں
3: یار
1: اس سے رونے کی فیل نہیں آتی تو سنتے کیوں
4: کم آئے گی
1: نہیں پھر کوئی گانا ایسا بتاؤ جس سے رونے کی فیل نہ آئے
4: خوشی والا گانا سیڈ موڈ چلا
1: ہیں
2: کہہ رہے خوشی والا گانا سیڈ موڈ میں لگا لیں
1: ویری گڈ یار کتنی اچھی بات کر رہے ہیں کو لگاتے ہیں ہم ہاں ہاں ہاں یار یہ گانا بھی اچھا تھا عدنان ڈھول کا گانا لگا
2: سر وہ آج وہ ابھی گانا آیا نا تصویریں
3: تصویریں نہیں تصویر
2: تصویر
1: کس کا ہے
2: راحت فتح علی خان صاحب کا اور ابرار الحق صاحب
3: لیکن وہ سلو ہے
2: وہ رونے والی فیل نہیں آتی
3: سلو ہے
1: نہیں وہ زیادہ سلو تھوڑے اپ بیٹ ہونا چاہیے تھوڑا سا اپ بیٹ کوئی بات نہیں
3: نہیں وہ اپ بیٹ نہیں ہے وہ سلو
1: تیرا دیوانہ لگا دیں عدنان ڈھول کا
3: ہاں وہ لگا دیں
1: وہ لگا لیتے ہیں چلیں جی گانا لگاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے پھر آپ کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتے جائیں گے یا ریکویسٹ والے گانے لا دیے ریکویسٹ والے چلے لگائی جاتے ہیں جی جن کی کال ملے سن تم ملے جب سے اچھا کیسا گانا ہے
3: اچھا
1: اچھا سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے
3: جی جی سنا
2: میں نے نہیں سنا سر تم ملے جب سے
1: چلیں جی آج ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنیں وقت ہو چکا ہے 11:03 17 ستمبر 2026 کا سن ہے آپ کال کر سکتے ہیں 0422111001 اور ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اگر آپ کا کال پہ رابطہ نہیں ہو رہا فاطمہ کہتی ہیں کتنے پیسے لیے ہیں انٹرن سے جو روز ساتھ لے آتے ہیں میرا سال پورا لنگ جائے گا انہیں پیسے لکھتے ہیں آپ اگر آنا چاہیں نا تو پھر مجھے بتانا میں آپ کے لیے ریٹ ذرا ڈفرینٹ ہوگا ٹھیک ہے

0: आपको।
1: आला जी, वेलकम बैक जी। वक्त हो चुका है 11:05 एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉग, जिसमें हम बात कर रहे हैं कलर्स के ऊपर। और इस वक्त मेरे साथ इस्लाम मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त हसीब हैं और शहीर हैं, और मेरे साथ बिलाल हैं एंड आरजे मोहसिन है। एंड लेट्स टॉक अबाउट ट्रिप जो हमने किया, और बड़ा मज़ा आया, यकीन करें आई लव्ड इट। आप लोग बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ज़रा बारी बारी बताएं।
2: सर बहुत मज़ा आया। अगर मैं इस तरह कहूं कि इस्लामाबाद से वापस आके मेरा दिल इस्लामाबाद में रह गया तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
1: आने भी कटो बाहर
2: निकालो भाई। नहीं, विजिट के हवाले से कह रहा हूँ मैं। विजिट जो हमारा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का हुआ वो भी अच्छा है, लेकिन ये कि मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: कि इस्लामाबाद से
3: एंजॉय किया।
2: हाँ, इस्लामाबाद में जो वाइब्स आई तो वो बयान एबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे नया लफ्ज़ जो है,
1: ओह माय गॉड, नया लफ्ज़ आया डिक्शनरी में, बयान एबल।
2: वो बयान एबल नहीं है।
1: ये हमारे जलसे में शामिल होने वाले बिन बुलाए मेहमान बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बता रहे हैं, बयान एबल।
2: हमने आपके शो को रौनक बख्शी है सर, जलसे की वजह से, और इसके लिए आपका शुक्रिया। और मिनिस्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया। आपकी मेहनत से, उनके तावुन से जितनी अच्छी इंटर्नशिप और उसके बाद ये विजिट हुआ, मैं नहीं समझता कि जो पहला बैच है, उसके बाद भी बैच आएंगे, वो हमारी नकल कर सकेगा। तो ये पहला बैच था, इंतहाई कामयाबी और मेहनत के साथ आप लोगों ने इसको
1: बर्दाश्त किया,
2: तकमील
1: नहीं बार नहीं किया।
2: आप लोगों को मजा आया, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मजा आया।
1: तुम्हें किसने कहा मजा आया?
2: आप लोग
1: भाई, वो तो सामने बैठ के ही कहना होता है बहुत मजा आया, वेरी गुड यार, वेरी गुड।
4: आप लोग बहुत,
1: वो अंदर से तो बंदा कह रहा होता शुक्र है, शुक्र है इन्होंने 2 महीने जान खा दी रखी।
2: अभी तो हमने अगले बैच में भी आपके पास ही आना है ना, तो अभी आप तो आप और झीलेंगे।
4: इस्लाम जान नहीं छोड़,
2: आपकी जान हम नहीं छोड़ने वाले। तो
1: हम शॉर्टलिस्ट कर देंगे
2: अगले बैच में, हमारे जो एक्स है इनके लिए कोटा रखें कि हम भी कोई 5-4 जो है वो
1: एक्स
2: जी
3: एक्स
2: इसका कोई टैग होता है ना इंटरनीज, हाँ उनका कोटा जरूर रखें।
4: एलुमनाई होता है,
1: नहीं बिल्कुल ठीक है। उसमें हम फिर ये अनाउंस करेंगे हमारे एक्स इंटर्नी है, ये वो लोग हैं जो बड़ी हमने मेहनत की, कुछ नहीं सीख पाए, इन्हें दोबारा सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ करके बना ले।
4: इस कमेटी का हेड इस्लाम है।
1: नहीं नहीं, इसका हेड तो तुम हो।
4: आई एम देयर।
1: ऐसे नहीं होता। अच्छा जी असीब, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अब अनडाउटेडली इकट्ठे जाना, जाहिर है आप खुद से जाएं और इकट्ठे जाने की फील एक डिफरेंट फील है ना उसका।
5: बिल्कुल, विजिट से ज़्यादा ये था कि वहाँ पे मेमोरीज बड़ी ज़्यादा बनी, ना खुद सोए ना किसी को सोने दिया। और आपका भी
1: देखो, मैं ताश खेलता रहा, मैं इनके साथ ताश खेलता रहा, सुबह 5:30 बजे तक ताश खेले हैं। वो बेचारा शरीफ आदमी है हमारे साथ, एक फंस गया, उन्होंने ठुल्ले मार मार के कर दिया, उसका रोने वाली हालत हो गई। फिर मैंने महसूस किया, मैंने कहा तहजीब का दामन इनके हाथ से छूट रहा है, तो मुझे चले जाना
4: चाहिए।
5: और उसके बाद भी हमारे फ्लोर पे रूम था, हम वहाँ पे गाते रहे हैं, बजाते रहे हैं, शोर करते।
1: ये पहले नीचे वाला अपना नीचे फ्लोर पे थे,
3: ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे थे?
1: नहीं नहीं, उधर ही थे, उसी फ्लोर पे, फोर्थ पे थे,
5: फोर्थ पे थे हम।
1: उधर एक कमरे का दरवाजा खुला, उन्होंने कहा भाई दूसरों के आराम का ख्याल करो, और मैं आवाज सुन के पहचान गया, मैं कह ये एक ही है जो इतनी बदतमीजी से गा सकता है असीब है।
5: आज ना कुछ सुना,
3: जिसकी वजह से दूसरी
1: दो दिन बहुत सुना। ट्रिप बताओ।
5: देखा, अच्छा ट्रिप बड़ा अच्छा था, सब अच्छा गया। थोड़ा सा बस मसला हुआ जब हाईलैंड्स की तरफ गए, दिल खराब हुए सारों के, आधी बस उलट गई थी अंदर से ही, बंदे उल्टे हुए थे। लेकिन उसके बाद जब रूम में आए तो बड़ा सुकून हो गया और अच्छा रहा।
1: हाईलैंड अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस?
5: नहीं, प्लेस तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन ऊपर जब गाड़ी ऐसे जाती थी तो वो एक दफा दिल पीछे की तरफ जाता था,
3: गाड़ी आगे जाती थी दिल पीछे जाता था।
5: हाँ, ऑपोजिट रिएक्शन जा रहा था,
3: शुरू में
1: रूटीन ना हो,
5: पीछे जा रहा था। वापसी पे और ज्यादा लोग अफेक्ट हो गए थे, और उसके बाद
3: कान बंद हुए थे, कान बंद,
5: कान बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब हम सुबह का जो हमने विजिट किए हैं, DCD का विजिट किया है, उसके अलावा पाकिस्तान
1: डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जी, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर है अताउल्लाह तारिक साहब, उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, इवन PTV बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, बहुत ही खूबसूरत वो बना दिया है, और वहाँ से फील ऐसे आ रही थी आपको जो है बड़े हाई फाई कॉर्पोरेट मीडिया हाउस में फैल रहे हैं, बहुत खूबसूरत।
5: और जो क्वांटम वैली में जो उन्होंने इवनिंग रखी थी जिसमें हमारे वो हो रहे थे, क्या कहते हैं उसको, शोज हो रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो वो भी बड़ा अच्छा था, और उनकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया
1: भाई, उन्होंने खुद वेलकम किया आपको, जो सारा दिन पहले पीटीवी वेलकम किया, फिर डीसीडी किया, फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए, फिर शाम को आप गए डीसीडी में, एक एक चीज़ आपको वहाँ पे उन्होंने खुद ब्रीफ की, फिर उसके बाद शाम को डेलीगेशन आया था उज़्बेक, उनसे इंटरेक्ट करवाया, फिर उन्हें वेलकम करते हुए मैं समझता हूँ मेरे मैं आई वॉज सो हैप्पी कि हर एक डेलीगेशन इंटरनेशनल बैठा है, और उसकी मौजूदगी में जब उन्हें वेलकम किया तब भी आपको साथ वेलकम किया।
3: सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है,
1: वहाँ पे रिगार्ड है, मतलब इतना आपको रिगार्ड देना, इतनी आपको रिस्पेक्ट देनी, फिर एंड पे अपनी स्पीच के जब उनका फिर शुक्रिया अदा किया, तब फिर आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा किया, फिर मैं सोचता पिया सी मतलब इन्होंने
5: सर इससे पता चलता ना खूबसूरत दिल के मालिक हैं।
1: हाँ नहीं वो तो है, वो तो है, सोच रहा था जिन्हें कर रहे हैं वो आखिर कर के लिए
5: नहीं, शक्ल से
3: हमारी बात कर लिया, शक्ल से अभी ठीक है
1: जी सही
4: फिर बहुत अच्छे,
1: पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो बता ही दो,
3: ये भी जलसे का हिस्सा है ना।
4: हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं डिफरेंट पहले तो आपका थैंक यू, मैंने इससे पहले भी एक जगह पे ये
1: आरजेइंग करी जा मैं भी तेरे खिलाफ
4: अच्छा आरजेइंग वाला एक्सपीरियंस किया, एक मैंने कोर्स किया था एक पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी से, बट जो आप लोगों ने किया एक बिल्कुल लाइक फैमिली ओरिएंटेड, अपने हमें अपने टीम का हिस्सा समझ के, सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बाकी इस्लामाबाद में हमने जितनी भी प्लेसेस विजिट की आपने बताई दिए, मैं तो सबकी तारीफ कर चुका हूँ पहले ही, बट मिनिस्टर साहब ने जो हमारे साथ पूरा लाइक टाइम स्पेंड किया, एंड इससे पहले मैंने किसी भी मिनिस्टर को आज तक, जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना एंड रील्स आ जाती हैं, मैंने आज तक रील्स में भी किसी को नहीं देखा जो सिर्फ फ़ोन कैमरा लाइक वेलकम कर रहे होते हैं, एंड इवन ऑफ कैमरा ही वेलकम्ड अस एवरीवेयर, सो डैट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रिप,
1: है ना, बहुत मज़ा आया जी। बिलाल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
0: सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सबसे पहले हम जब यहाँ पे इकट्ठे हुए उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया है मिनिस्टर साहब ने, हमें इनवाइट किया अपने पास, वो बहुत अच्छा था, और ये मेरा ख्याल है कि रेडियो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इंटर्निस को इतना उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, उन्हें विजिट करवाए हैं और उनका वेलकम खुद किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और जो हमारा ट्रिप था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, और भी खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आपका शुक्रिया।
1: मैं नाश्ते का बड़ा मज़ा आया था
0: कौन से वाले नाश्ते का सर?
1: तुमने ये मेरा
5: उधर एक ही किया
0: फिर नहीं, वो होटल में तो हम सबसे पहले करके चले गए थे,
1: तो फिर नाश्ता, हाँ
0: वो नाश्ता अच्छा था, एग्जैक्टली मुझे लगा कोई और नाश्ता जो आपने
6: जो हमें नहीं मिला, आपने सिर्फ मंडे
0: खा, इसने रात को बोला कि मैंने डाइट करनी है,
1: मारे थे अंडे के? नहीं
0: नहीं नहीं अंडे मारे नहीं, इसने बोला कि मैंने ना जिम शिम करना है, डाइट करनी है, मुझे बताओ क्या करूं मैं, मैंने कहा ठीक है घर में तो मिलता नहीं, यहाँ पे तुम मंडे शंडे खाओ,
1: ठीक बात।
2: सर आपकी इजाजत से मैं ऐड कर दूं?
1: नहीं अभी पहले हम उसकी बात पूरी कर लें।
2: हाँ चलें करें।
1: हो गई?
0: ओवरऑल सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच
1: जी। ऐड करें
2: सर वो ये कि जब हमारा उधर वफद जो है वो आया हुआ था और वो परफॉर्मेंस लाइव हो रही थी उनके सामने, तो माइक तो मैं आपका इस पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है वो हमारे एक इंटर्नी अब्दुल रहमान नासिर उनको मौका दिलवाया कि उन्होंने भी उस स्टेज के ऊपर जा कर बात की।
1: हाँ बस ये एक आप लोगों के खैर जितना मैक्सिमम हो सकता था उसमें कोशिश की है, और आई एम रियली वेरी हैप्पी, और अनडाउटेडली ये इनिशिएटिव भी उन्हीं की तरफ से था, मिनिस्टर साहब की तरफ से, फर्स्ट एवर इंटर्नशिप इन 80 इयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ रेडियो पाकिस्तान,
3: रेडियो पाकिस्तान,
1: और फिर वो यहाँ पर सर्टिफिकेट सेरेमनी में भी आए।
3: हाँ जी वो संडे को सर्टिफिकेट
1: भी उन्होंने दिए। इतनी लंबी यहाँ पे आप लोगों से गुफ्तगू भी की, गपशप भी की
0: सर, वो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन हम ऐसी चीजें ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आएगा, मिनिस्टर आएगा, हमें वेलकम करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप था और ये सब कुछ आपकी मेहरबानी से हुआ। अगर आप ये प्रोग्राम ही ना स्टार्ट करते तो ये कभी भी हमें ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती ही ना।
1: नहीं, ये कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव फिर ये उस दिन भी तकरीर में मैंने कहा था मिनिस्टर साहब का, और बड़ा मज़ा आया जी ओवरऑल। I loved it. अच्छा कुछ मैसेजेस आप शामिल करते हैं फिर कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं हम। आयशा ने कहा सैड सॉन्ग, अच्छा ठीक है। अस्मा, सज्जन कल कहाँ थे आप, हाय हाय। दीवाने आंखें बिछाए बैठे रहे, चांद निकला ही नहीं मेरी सताईशी आंखें, कहाँ मिलेंगी तुझको, आईने में बहुत बन सबर के रोएगा। मैं भी पहले लाल लिपस्टिक लगाऊंगा
0: सर, ये तो उनके दिल से निकली है।
1: लालो लाल सारा मेकअप करके, फिर एक चीज की कमी रह जाएगी, नाक में चिट्टी कर लूंगा ताकि मैंने देख के थोड़ा जहा सा भी आए फिर होना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, फातिमा का मैसेज मैंने पढ़ दिया जी, कितने पैसे दिए ठीक है। जमले जब्त कुछ इस तरह आजमाऊंगी, खुद अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी।
0: वाह
1: क्या बात है, क्या बात
3: है कह रहे फॉलर वाली तो नहीं है
1: अच्छा यार, इकरा ने कॉल करनी है जी 051 इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद का नंबर सेम है, बस यहाँ पे 042-111-0101 है, वहाँ पे 051 है, 0042-111-0001 लाहौर का नंबर है। और आबिद है, क्या कहते हैं, मातमी कलंदरी, क्या बात है जी। और कहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं, उस्मान टाउन फैसलाबाद से। इस्लाम की, वालेकुम इस्लाम भाई, कैसे हैं, आपके शो का इंतज़ार रहा, आपकी आवाज़ सुनकर दिल को राहत से मिल जाती है। शान कलंदर में कसीदा सुना दें तो मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। हम उनकी शान में क्या अब आपको सुनाऊँ मैं। अगर आप राह सलूक की बात करें तो अहले तसव्वुफ में गुफ्तगू जो मशहूर है वो ये कहते हैं, कलंदर वो होता है जो दरे बतूल से फैज लेता है।
3: वाह,
1: अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, बाकी जितना भी कहा जाए मैं समझता हूँ कम है, तो इससे आगे और कोई बात नहीं है। और कहते हैं तसव्वुफ में ये सिलसिला जो है फकर का, ये हजरत बीबी फातिमा से शुरू होता है और इसका फैज उनके दोनों साहबजादों से जारी होता है, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन।
3: बेशक।
1: अब और मैं क्या आपको सुनाऊं, ये बहुत है। वकास बुट्टर फ्रॉम रूमी पार्क, ये किधर है रूमी पार्क, किधर है। मेहर फातिमा इस्लाम सर जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, तबीयत से ठीक, यस फाइन। इस्लामाबाद खैर से गए थे, हाँ बुलाया था किसी ने, किसी को बड़ी शदीद याद आ रही थी, कहे थे अकेले ना आना, ज़्यादा सारे लोग साथ लेके आना, मैं तुम्हें सारे लोगों में देखना चाहती हूँ, फिर मैं ढूंढूंगी,
3: पहचानना चाहती हूँ
1: कौन है आप।
0: उन्होंने पहचाना आपको या नहीं?
1: नहीं, उन्हें होर मुंडा पसंद आ गया आप ये हैं नहीं मैं नहीं, नहीं जो मुझे पसंद आ गया बस यही है, आप हट जाए,
3: आप झूठ बोल रहे
1: हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं ऐसा। हाँ घूमने फिरने गए थे या कॉलर सही कह रही थी, हमने बहुत मिस किया आपको। अच्छा, मुझे तो मैसेज कोई नहीं आया। अलीश भाई फैसलाबाद से, कैसे मिजाज हैं आपके सर, बड़ा बेताबी से इंतजार करते हैं आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे जरा मैसेज करें ना कल कल किसने इंतजार किया, जरा और पता लग गया,
3: लिस्ट बनाएंगे।
1: हाँ अपने मोबाइल से SMS करें, अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है आपने SMS करना है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। आयशा जे तू मेरी जान भी मांग ले, ये सॉन्ग प्ले कर दे। कहाँ से ढूंढ के लाती है गाने आप। सलाम मोहब्बत, मैं आसमा, ओके आप आए बाहर आई, खूबसूरत अंदाज, उर्दू पंजाबी इंग्लिश कितना प्यारा बोलते हैं आप माशाल्लाह। बंदा जरा चंगा लगता है ना वो फिर बंदा ऐसे ही कहता है ना, भी बोलता हो ना दोस्तों में बैठ के भी कर रहा होता यार कितना अच्छा बोलती है, क्लास फेलो हो ना तो नाल आला सोचता है। वो दी आवाज सुन के तो मैं डर जाना। इससे क्यों अच्छी लगती है? आपको अच्छा लगता है तो फिर अच्छा लगता है ना?
3: अच्छा लगता है जो मुझे लगता है।
1: वो जो भी कहे बंदे को अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: शुरू शुरू में ले
0: बिल्कुल
3: हाँ शुरू शुरू में
1: फिर बंदा
3: शुरू में तो चुप भी रहे तो अच्छा लगता है।
1: नहीं बाद में बंदा कहते तुम चुप ही रहो, चुप ज्यादा अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती है चुप।
0: सर ये कैसे पता चलता है कोई कितने टाइम तक आपको अच्छा लगेगा?
1: जितने टाइम तक आपके मकासद नहीं पूरे हो जाते।
0: कौन से मकासद हैं सर?
1: आपकी सेटिस्फेक्शन।
0: अच्छा
1: इट इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन।
0: ठीक है
1: मेंटल सेटिस्फेक्शन नॉट फिजिकल।
0: एग्जैक्टली
1: इमोशनल सेटिस्फेक्शन।
0: मैं समझ गया हूँ सर।
1: आप जहाँ फील करें हाँ मैं पूरा जान लिया। सिंपल सी बात है, जब तक आप हर तरह से मुकम्मल किसी को जान नहीं ना लेते आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो कोई टॉय है, वो मोबाइल है, वो गाड़ी है, जब वो हो जाए ना और फिर आपको उसके अलावा ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर लगना शुरू होती हैं।
0: सर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुकम्मल किसी को जान ही नहीं सकते।
1: वो अलहदा बात है, लेकिन जिस दिन आप फील करें ना आपके पास कोई चीज है उसी कैटेगरी की कोई और चीज आपको अपील करना शुरू हो गई है तो समझ जाए आपका दिल भर चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी।
7: वालेकुम सलाम असद भाई, कैसे हैं
1: आप? जनाब तारिक साहब कैसे हैं? ठीक हैं
7: सर, सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने भी मिस किया कल आप।
1: मैं भी मर ही जाते
7: अल्लाह दी कसम है। और तुसी देखा ना कि गुजरात दे फिर हो सकदा
1: ना? आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने में क्या है।
7: बस एक बात है, सब जो आपके आए हैं फ्रेंड्स वगैरह जितने सबको सलाम मेरी तरफ से।
1: फैन कोई नहीं आया पाए ना? फैन नहीं है के ये बड़े उस्ताद ने।
7: अच्छा कहूँगा कि हमारे गुजरात के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अफसर साहब अल्लाह ताला इनको बहुत बड़े ओहदे पे रखा हुआ है, तो इन क्राइम टाइम रहे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ना रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे अंकल थे, रियल अंकल इरशाद अहमद, कभी आप कंफर्म कीजिएगा। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थी ना बेनजीर, उन्होंने अफसोस किया था, उनको लेटर लिख के ना उनकी डेथ हुई थी। तो यानी कि अल्लाह का शुक्र है गुजरात हमारा बड़ा पॉपुलर है।
1: ऐसे ही है जी, स्टडी में बड़ा पॉपुलर है। गुजरातियों ने अच्छा जुत्ती
3: चोरी
7: मेरी चुकी गई थी, मेरी चुकी गई।
1: मैंने बड़ा परेशान रहना, मैं कहना यार ये क्या बात है, जिते जाइए जेड़ा कुछ मिलता है ना। अच्छा जुत्ती चोर हम तो जुतियां नहीं चोरी करते।
7: अच्छा वो एक्चुअली पता है कि मेरे फ्रेंड आते हैं कंगनपुर में, मैं तो गया कंगनपुर फर्स्ट टाइम बस पे गया, तो लकड़चोर मैं की चक्कर है, कहते सारा जंगल ही खा गए लकड़ी काट काट के। कंगनपुर में मशहूर है, कसूर से आगे है।
1: ऐसे ही है जी। लेकिन बाद में मैंने फिर वालिद साहब से अपने पूछा तो बकौल उनके कि तारीख ये है कि ज्योति चोर था, ये ज्योति एक नाम था खातून का।
8: कुछ ना कुछ तो चुराया ही है ना।
1: तो वो कोई ताडे आरदा गुजराती सी तारक साहब।
7: अच्छा जी ठीक हो गया।
0: ज्योति चोर
1: तो दोनों का प्यार मोहब्बत का सिलसिला फिर बढ़ गया कि घर वाले नहीं मानते थे।
0: सर ये बड़ा मसला है कि घर वाले नहीं मानते।
1: वो फिर लेके उचक गया ज्योति को।
0: अच्छा किया।
1: उसके बाद फिर वो ज्योति चोर से
3: ज्योति
1: चोर उन्होंने कहा अच्छा ज्योति से रही नहीं है ज्योति चोर।
7: सर्दियों के दिन थे, तन्हाई बड़ी शदीद थी, तो आज ही डॉग शेर शायरी कह रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। आज तो रेडियो स्टार्ट है।
1: थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, लॉस ऑफ लव।
7: अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला और आपको कामयाब।
1: थैंक यू अल्लाह हाफिज़। जासिर आया लाइव स्ट्रीम पे, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, हमें श्रीनगर से सुन रहे हैं जी ये, और बड़े पुराने हो चुके हैं अब, और बेचारे यहाँ पे आकर मेरी स्ट्रीम ते ही आके जड़ा है ना, कभी कहते हैं मेरा इससे रिश्ता करा दे, मेरा इससे रिश्ता करा दे।
0: फिर कौन सी दिली ख्वाहिशात है
1: ये रिश्ता करवाने की? रिश्ता
0: ये तो और भी यहाँ पे लोग बैठे
1: हुए इस गाय, यू नो इट्स मेल,
0: उसका रिश्ता नहीं हो रहा। और यहाँ पे
1: वी ऑल आर स्ट्रेट
0: सर,
1: फॉर हेवन सेक कम ऑन
0: सर, उनका रिश्ता हो नहीं रहा, आप रिश्ता करवा नहीं रहे।
1: खुदा के बंदे मैं रो पड़ूंगा अगर किसी दिन दोबारा मुझसे मोहब्बतों का सवाल पूछा, जवाल पूछा, मैं रो पड़ूंगा।
3: वाह
1: मैं उसके दिल में रहा हूँ लेकिन अब उसके दिल से निकल चुका हूँ, वो अपनी राह पर चला गया है, मैं अपनी राह पर चला गया हूँ। अब इससे ज्यादा कोई भी मुझसे सवाल पूछा मैं रो पड़ूंगा।
9: बड़ी गहरी बात
1: मैं बता रहा हूँ,
3: ये रोने वाली बात है।
1: तुझे बार बार पूछते फिर दे हो।
0: बड़ी गहरी बात,
1: खुदा के बंदे में रो पड़ूंगा। था मेरी आंखों का जो भी तारा, सभी से ज्यादा था मुझको प्यारा। था मेरे चिलमन का एक सितारा, वो मुझसे कैसे बिछड़ गया कमाल पूछा, ये सवाल पूछा मैं रो पड़ूंगा।
3: क्या बात,
0: क्या बात है।
1: खुदारा अब भी है मेरी चाहत, वो मुझसे चाहे बिछड़ गया है, खुदारा सुन ले कभी भी उस पर सवाल आया मैं रो पड़ूंगा। खुदा के बंदे मैं रो पड़ूंगा। अभी मैं खुश हूं, अभी वो भूली हुई है मुझको। अभी मैं खुश हूं, अभी वो भूली हुई है मुझको, मगर अचानक कभी जो उसका ख्याल आया
0: मैं रो पड़ूंगा,
1: मैं रो पड़ूंगा।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात है।
1: खुदा के बंदे मैं रो पड़ूंगा। वो उसके होंठों की मुस्कुराहट और उसके चेहरे की रोशनी पर कभी खुदाया जो अंधेरों का जाल आया मैं रो पड़ूंगा। हाय क्या यार, अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या बात है।
1: हेलो,
10: अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम सर।
10: आज ये डॉक्टर
1: जी,
10: आज ये डॉक्टर
1: जी जी जी जी जी जी
10: सर, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ भेरा से।
1: कैसे हैं रिजवान? कल हम भेरा में रुकने की कोशिश करते रहे लेकिन बारिश ने रुकने नहीं दिया। लेकिन मैं खड़ा होकर नांदा रहा, मैं क्या देखी जाएगी यार। मैं तसल्ली से एंजॉय किया, बारिश में नहाता रहा, गीला हुआ। अच्छा हो गया, मैं गीला हो गया।
10: सर बड़ी खुशी हो रही है, पहली दफा आपसे बात हो रही है। मैं एक घंटे से कॉल मिला रहा हूँ, मेरे मैसेज नहीं
1: दिया। रिजवान भाई बहुत अच्छा लगता है, और जब मेरे शो में लोग आते हैं जो कहते हैं हमने पहली बार कॉल की है, और फिर आके रुक जाते हैं और फिर FM 101 को सुनते हैं और बताते हैं कि हम अब रेगुलर सुन रहे हैं, मुझे यकीन करें बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच।
10: थैंक यू सर।
1: शादी हो गई आपकी?
10: शादी सर अभी तीसरी के चक्कर में हूं ना।
1: हैं
0: क्या नहीं क्या नहीं कह रहे हैं रिजवान भाई?
10: सर दो तो हो चुकी हैं, तीसरी करने लगा हूं।
1: दो हो गई अब तीसरी जो है ना, दो इकट्ठी दो ढूंढना। अच्छा
10: नहीं नहीं सर,
1: एक अपने लिए एक मेरे लिए।
10: इंशाल्लाह
1: दो में कठी हूं तुसी ना कर लेना।
9: चार पूरी करनी।
5: हमारे हिस्से की भी ये ले जा रहे
0: हैं। बड़े खुश नसीब है।
1: क्या बात है रिजवान भाई, छा गए छा गए।
10: मैं एक आपको बात बताना चाहता
1: जी। बताएं बताएं,
0: अब तो कुछ भी बताएं।
10: जब मैंने आपको पहली दफा रेडियो पे सुना
1: जी,
10: तो मेरे मतलब एक दिल में ख्याल आया कि इनकी पर्सनल मतलब इम्प्रेस में हो गया आपकी आवाज से और आपके अंदाज से
1: जी।
10: और मैंने दिमाग में सोचा कि इनकी पर्सनैलिटी, इनका चेहरा किस तरह होगा।
1: अच्छा जी, और फिर आप तो देख के बड़ा मायूस हुए।
10: सर आप कैसी बातें कर रहे हैं।
1: अच्छा
10: फिर अब मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो 3 महीने के बाद छुट्टी जाता हूँ घर पे।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह,
10: 2-2.5 महीने के बाद
1: माशाल्लाह।
10: तो जब छुट्टी जाता हूँ तो फिर टच मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ।
1: ठीक है।
10: अब जाके आप पहली दफा मैंने देखा तो आप बिल्कुल वैसे ही थे जिस तरह मैंने आपको तस्वीर में।
1: क्या बात है, जिंदगी में मुझे पहला इंसान मिला जिसने बात करके मुझे खुश कर दिया कि मैंने सोचा ही आपको ऐसा था, आप इतने कोजे होंगे।
10: सर आप ठीक नहीं करे, आप इतने खूबसूरत है ना सर, आपको लव यू।
1: Love you too, भाई।
0: सर ये बात तो रिजवान भाई की सच्ची है, खूबसूरत तो आप है।
1: Love you too, bro. Love you too. और यकीन करें हर चीज एक तरफ है। आप देखे पाकिस्तान आर्मी से हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और आप लोग सुनते हैं, हम इस पे बड़ा खुश होते हैं, और यकीन जाने हम चाहते हैं आप इसी तरह हमें सुने, और हम आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ आपको हमारी जरूरत है हम बिल्कुल आपके शाना बशाना खड़े हैं।
10: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی، اللہ حافظ.
5: اتنی ڈیوٹیاں کوئی کیسے کر سکتا ہے
1: نا،
5: پاکستان آرمی میں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں ماشاء اللہ.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا لگتا ہے جب کال جاتی ہے اس طرح کی.
11: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
11: ملائکہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. آجے بھیا سے بات کرنی تھی. آجے
1: جی جی سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، بولیے. آج فرسٹ ٹائم آپ نے کال کی ہے؟ اچھا کل آپ نے پہلی دفعہ کال کی اور وہ بھی میرے سے بات ہی نہیں کی، میں نہیں بولتا آپ سے. پہلی دفعہ تو میرے سے بات ہونی چاہیے تھی نا، میں ناراض ہوں.
11: آپ کی آواز اور آپ کا انداز اور آج رحمان بھیا کا بھی انداز اور خوبصورت ہے.
1: کٹھے ملائے کانفرنس کال کرتے ہیں نا.
0: آپ ابھی دیکھ رہی ہیں آر جے ڈاگس کو؟
11: نہیں یہ آپ آر جے ڈاگس بات نہیں کر رہے ہیں.
5: نہیں نہیں میں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ آر جے ڈاگس کو ابھی دیکھ رہی ہیں؟
1: دونوں اکٹھی آئے نا پھر مزہ آئے گا.
11: میرا چھوٹا بھائی بھی آپ سن رہا ہے، آپ
1: ان کو بھی میری طرف سے بہت سارے سلام دیں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سے سنتے ہیں اور بتاتے ہیں پہلی مرتبہ کال کی. مجھے یقین کریں بہت آئی فیل آنرڈ. جی جی بتائیے بتائیے پلیز. انڈین نہیں چلا سکتے نا.
11: انڈین میں
1: ہاں پاکستان
0: پاکستانی کوئی بھی بتا دیں.
1: آپ کے لیے گانا چلاؤں اپنی پسند کا میں ابھی؟
11: ہاں جی چلا.
1: آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، آپ نے سننا.
11: اور نا جب ہم آپ کی آواز سنتے ہیں جو آپ کے شو میں ایک ٹاپک ہوتا ہے نا وہ ہماری زندگی کے لیے
1: جی
11: سبق بن جاتا ہے.
1: بس دعا کریں جب تک یہاں پہ ہوں کچھ اچھا اچھا سا.
11: اگر میری کوئی
1: دل آزاری ہوئی؟ نہیں نہیں بالکل دل آزاری نہیں ہوئی، بہت اچھا لگا جی. اسی طرح سنتی رہیں، اسی طرح کنیکٹ رہا کریں. تھینک یو ویری مچ.
11: میں آپ کو نا ہر شو میں آپ کا کال کروں گی، آپ کی میں اچھی لسنر بننا چاہتی ہوں.
1: تھینک یو ویری مچ. بالکل کریں، وڈ لو ٹو. بہت شکریہ،
11: اللہ
1: حافظ. اللہ حافظ.
3: سر کتنا اچھا لگتا ہے جب نئے سننے والے آتے ہیں.
1: ہاں نئی سننے والی آتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے
3: سر. سننے والے آتے
1: ہیں وہی وہی جگنو جونیئر ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اللہ تعالیٰ سر ضیاء انجم کو اچھی صحت اور تندرستی والی زندگی دے. تمام سننے والوں سے میری بڑی ریکویسٹ ہے جی، آلویز ریممبر جب بھی نماز پڑھے دعا کے لیے یوں بیٹھے بیٹھے کوئی خیال گزرے یا ہاتھ بلند کریں تو میرا بڑا اچھا بھائی ہے ضیاء انجم، اس کے لیے ضرور دعا کرتے رہیں. اور سید محمد علی ضیاء صاحب ہیں. السلام علیکم آج ڈاکس. وعلیکم السلام. ہوپ یو آر فائن. یس آئی ایم فائن. میں سمجھا آج بھی رحمان بھائی شو کریں گے، کل ان کا انداز کافی فاسٹ تھا. بائی دی وے اپنے شو میں وہ دھیمے ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، وہ بڑا عارضے ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ ایڈجسٹ کر گیا ہوگا. سر آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا بے عزتی کر رہے ہیں؟ جاسر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اگر آپ محسوس کریں تو، اگر نہیں کریں گے تو پھر بے عزتی ہوگی. میں تعریف کہہ رہا ہوں. بابر ایوب خان میرے بڑا اچھا بھائی ہے، ابھی آیا. السلام کیا. وعلیکم السلام. سید اچھا جی علی ضیاء کہتے ہیں سرٹیفیکیشن سیرمنی میں آپ کی پکس دیکھی، آپ کی لک کافی ٹھیک
3: ہے.
1: یو لک مور ہینڈسم ان فارمل ڈریس. اچھا تھینک یو ویری مچ. اچھا جی نیلما سردار بنگلہ دیش سے سنتی ہیں. لاٹس آف گڈ گریٹنگس فرام بنگلہ دیش، لسننگ ٹو یور گریٹ پریزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ نیلما. آفٹر سچ اے لانگ ٹائم یو آر ہیئر. ویئر ہیو یو بین؟ آئی بین ویٹنگ فار یور میسیجز اینڈ ہیئر یو آر ناؤ. اٹ واز اے لانگ بریک بائی دی وے. اچھا طاہر مسعود نے سلام کیا. وعلیکم السلام. بابر بھائی کیسے ہیں آپ؟ और वहाँ यहाँ तो मेरी एक नहीं हो पा रही, ये बंदा तो आगे निकल गया, जासिर कह रहे हैं ना, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं।
3: एक ही कश्ती के मुसाफिर।
1: गाना लगाए एक
3: जी जी
0: लगा दें फिर।
1: चलो जी ला लीजिए फिर गाना ही है। वेरी गो। क्या नाम था कॉलर का वो जो आई थी मुल्तान से? मैं नाम भूल गया।
0: चलिए आप डेडिकेट कर देना उन्हें गाना।
1: अभी जो हमें कॉल की थी ये खूबसूरत सी आवाज मुल्तान से, ये गाना उनके लिए। Enjoy the number. This is Ajay Docs. और मेरे साथ हैं कौन है?
2: आदि इस्लाम,
0: हसीबुर रहमान,
4: शहीद तफ्तर,
0: अहमद बिलाल,
3: मोहसिन अली।
1: ओह या फालतू प्यार। बिलाल के गाना सुनता ज्यादातर।

Stadion.

0: जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:41, 17 सितंबर 2026 का सन एफ एम 101.8 पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट सरापे विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है जी बुध जुमेरात की शब 12 बजे तक। कल मैं नहीं आ पाया क्योंकि हम गए हुए थे इस्लामाबाद इंटर्नशिप प्रोग्राम की गुड बाय सेरेमनी थी।
1: गुड बाय सेरेमनी इट वाज रियली गुड।
0: अच्छा आप मुझे ये बताओ हसीब, सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छी और मज़ेदार मोमेंट कौन सी रही?
2: मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी नाइट स्टे, जिसमें हम सारे इकट्ठे थे और मजाक चल रहा था,
1: स्कैम भी हुआ था।
2: जिसमें हम एक दूसरे को तंग कर रहे थे, ना खुद सो रहे थे ना किसी को सोने दे रहे थे। और उसके अलावा नहीं, मेरे ख्याल से सफ़र की ये वाली याद ज़्यादा अच्छी थी,
0: ज़्यादा मज़ेदार थी।
2: हाँ, और एक जो बस में डांस वगैरह किए हैं लड़कों ने, वो बड़े अच्छे थे।
0: मतलब आप लोग इससे पहले एक दूसरे को मोस्टली नहीं थे जानते?
3: नहीं जानते। ये बाद में करना चाहूँगा कि स्पेशली जब आप किसी को जानते नहीं होते ना, बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार पता नहीं आप ट्रैवल कर रहे हो किसी के साथ, कैसा आपको महसूस होगा। लेकिन ट्रैवल करके ही आपको बंदे की कैपेबिलिटी का पता चलता है कि यार हाँ, सामने वाला बंदा इतना वर्थ इट है कि आप उसके साथ मजाक कर सको या आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जितने भी इंटर्न्स हैं, जितने भी लड़के थे, सब बहुत बहुत हम्बल हैं, किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, मजाक किया सबके साथ और सब ने इंजॉय किया है।
0: ओके, बिल्कुल सही है। आप बताओ शहीद।
4: सर वैसे तो वसीब भाई ने बता ही दिया, नाइट स्टे वाज वो ही सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। बट एक पाकिस्तान टीवी में हमारा एक इंट्रैक्शन हुआ है विद आदिल शाह ज़ेब साहब, एंड ही इज़ अ मैन, काफ़ी देर से स्टडी की उनके आर्टिकल्स पढ़ता रहा हूँ, तो मेरे लिए मतलब मुझे गूस पंप्स आ रहे थे जब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़े होकर हमसे बात करे।
0: दानू हर बंदा साडे अलावा
4: मैं आपको
1: रेडियो पाकिस्तान लाहौर के अलावा हर बंदा इसको पसंद है,
0: हर
1: चैनल इसको पसंद है, हर स्टूडियो इसको पसंद है।
0: इसकी एंट्री बैन करेंगे ना फिर इसे हम पसंद है। इसको एक्सेस इसकी लिमिटेड कर दें, अरे भाई ना लिखवा दें,
1: इसका बायस लिखवा देते हैं।
4: सर आपको मैं मैसेज दिखाऊं जो सबसे पहले दिन मैंने आपको किया था? क्या बोला था मैंने?
0: वो इसीलिए किया था कि तरह हो जाए, एंट्री हो जाए। इससे साबित ये हुआ कि जहां आपका तारुफ हो जाए आपका दिल भर जाए।
3: फिर वो अभी बात हो रही थी ना कि बंदा थोड़ा सा जब ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है फिर उसे वो बुरा लगना शुरू हो जाता है।
0: मैं समझ गया।
3: तो ये शहीर के यही
0: जी मोहसिन, आपके लिए सबसे मूवमेंट ना जाके कौन सी?
1: सर मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि सारे गए मैं नहीं जा सका।
0: तुम्हें तो कहा था, ऑप्शन दी थी, आओ बैठो हिस्सा बनो।
1: नहीं नहीं, वो आपने बिल्कुल मुझे,
0: अगर आप लोग आते तो आपको जरूर हम करते जी। और हाँ, सीरीन का मैसेज आया, बड़े अच्छी बात की है उन्होंने। ये देखें सीरीन, बड़ी पुरानी लिसनर है, राइटर है।
1: अच्छा।
0: ये मोहसिन है।
1: मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं?
0: बिलाल है।
1: मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक।
0: मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये सलाम कह रहे हैं। शहीर है, हसीब है, एलोएना ले कैमरा कर देना। अब बारी बारी बदल बदल के अपने ले कर दे रहना कैमरा, ठीक है? और ये अपने पास बल के कर रहे, जो बोले माइक भी पकड़ ले। और यहाँ पे हम कॉल लेते हैं, कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। किरण फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं आप? ठीक
5: जी।
0: बस
5: है? कलर के बारे में पूछना चाह रही थी, वाइट कलर के बारे में बता देंगे?
0: थोड़ा जोर से तो बोल रहे हैं।
5: वाइट कलर के बारे में बता देंगे?
1: अच्छा, वाइट कलर के बारे में
0: जी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप यहीं पे आप सुनती रहे, अभी बताते हैं। इसके अलावा और कोई बात है
5: जी? मैं आज गुप्ती फैन हूँ और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सलाम मेरी तरफ से।
0: वालेकुम
3: अस्सलाम। किरण लाहौर में कहाँ से हैं आप?
5: अवान टाउन।
3: अवान टाउन से? जबरदस्त, हमारे पास भी एक इंटर्न नहीं है, वो भी अवान टाउन ही रहती है।
5: सारे आप खुद भी बोल रहे हैं।
0: चले, थैंक यू वेरी मच किरण। और कोई बात है जी?
5: नहीं है।
0: जी जी बताते हैं। بالکل بتاتے ہیں.
3: اللہ حافظ.
0: جی وائٹ کلر کے بارے میں بتائیں.
1: سر وائٹ کلر پاکیزگی صافگی سادگی امن اور نئی شروعات کی علامت سمجھا جاتا ہے.
0: اوکے
1: یہ وائٹ کلر اٹس اے سمبل آف پیس
3: کامنس
1: پیس اور ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اونیسٹ ہوتے ہیں. سچائی والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. سچائی کو ہر چیز ترتیب سے رکھنا ان کو اچھا لگتا ہے اور ان کو پیسفل ماحول ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور پیس اور ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اونیسٹ ہوتے ہیں. سچائی والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. سچائی کو ہر چیز ترتیب سے رکھنا ان کو اچھا لگتا ہے.

0: खुद को चेंज नहीं कर पाते, ये वाइट कलर का है।
1: ओके, आप तक पहुंच गया होगा जी। जमशेद है लाहौर से, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। फायदा है, कहती है माड़ा क्या हाल है, और कल मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत मिस किया, और बाकी आरजेस को भी सलाम। माड़ा तुम इतना मिस करती हो, एक मैसेज ही नहीं करती यार, मैसेज तो करो तो पता चले तुम मिस करते। लाहौर से मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बाकी आरजेस को भी सलाम। आप मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा पूरा दिल हो। मुझे दिखाएं मैं कहीं पे अपने आप को अगर टच करूं, कोई पेन दूंगा आपको तकलीफ होगी? अगर मैं अपना बाजू पकड़ के दबा लूं कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? अगर मैं गला दबाऊं तो आपका दम तो नहीं घुटेगा?
2: तेरी आपके पूछने से सारा कुछ हो जाएगा जैसे आप पूछ रहे हैं।
1: इसलिए हर धड़कन के साथ हर लम्हा तेरी याद आती है, जस्ट फॉर यू।
0: क्या बात,
1: वेरी इंटेंस। नाम भी तो लिखे, मैं बाद में बिस्तर पे लेट के खुशी होता रहूंगा।
0: नाम लाजमी लिखा है,
1: क्या कह रहे हैं
2: भाई?
1: अच्छा अच्छा लिखेगा। नाम मोहम्मद बाबर है जी, और पूरा एड्रेस लिखा आपने, और नहीं सेल्फ बैक कैमरा ऑन है। और सलाम किया पाकिस्तान भाई, आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। लेकिन मैं कहता हूँ इतनी ज़िंदगी हो जिससे आप अच्छे तरीके से स्पेंड करें और किसी के काम आ सकें। आई बिलीव व्हेन आई जॉइंड द नौकरी, मेरे अब्बा ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ये जो भी इख्तियार, जो भी चीज़ तुम तक पहुँची है, ये तुम्हारा, इस पर कोई इख्तियार नहीं है, और ये इसलिए मिली है कि तुम दूसरे लोगों को बेनिफिट दे सको। अगर इससे तुम्हारी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना पहुँचे तो तेरी इस नौकरी का, तेरे काम का फ़ायदा ही कोई नहीं।
0: एग्जैक्टली अच्छा,
1: ये अगर कर
2: सर, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा हो गया।
1: असमा कहती है हम भूलने लगते हैं और दिल उसे फिर ढूंढ लेता है। है तुम्हारी याद कि जब जख्म भरने लगते हैं किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। मिस यू सो मच। मैं ये भी नहीं कह सकता मिस यू टू। हाँ, टेक्निकल बात थी। माय नेम इज सबा कवल फ्रॉम फैसलाबाद, शो इज गुड, सबको सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सबा। मेहर फातिमा सर, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दे, या फिर ढोला तेरी अखियाँ दी सॉन्ग एंड बेल गाएंगे। यार ये गाना याद रखना, अच्छा अच्छा प्ले करके जाएंगे। आयशा कहती है जे तो मेरी जान भी मांग ले। अच्छा जी, ठीक है जी। अलिशबा सर, कोई अच्छी सी पोइट्री डेडिकेट करें, कर दें बेस्ट फ्रेंड के लिए, उसका बर्थडे है। ओके ठीक है।
3: ये पहले ऐसे ही होता है, तुम मेरी जान हो, जब शादी हो जाती है बाद में बच्चों को आप चीज चूज लेके दो, कहते बेटा मामू से पैसे ले रहे हो, मामू के पैसे लगवा रहे हो, इस तरह की बातें होती हैं।
0: समझ आई?
4: नहीं समझ आई,
0: फील किया
1: सर? उसके बच्चे आपके साथ क्यों जाएंगे?
3: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने पहले बड़ा गमगीन शेर बोला था,
1: उसके बच्चे आपके साथ क्यों जाएंगे? और एड्डी फिर बेशर्मी, पैसे
2: एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, यहाँ इसकी दुकान होगी।
1: किस किस्म की यार सी बोंगी मारी तुमने, चुप करो। बाबर भाई आपकी वजह से लिखा है। आर के मुगल, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम सर, एक फरमाइश करना चाहती हूँ, जया अंजुम को डेडिकेट करनी है, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, उनके लिए दुआ करें, मैं उन्हें कहूँगा पूरी जिंदगी आपके नाम कर रहा है। इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है, डन करें। आर के मुगल, अली रजा हबीब, अली रजा लिसनिंग इन लाहौर, थैंक यू वेरी मच। यार जुगनू जूनियर आज बड़ी अच्छी पोएट्री कर रहे हैं। अकबर खान है जी, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, कराची से सुन रहे हैं, मेरे बड़ा प्यारा भाई है, बड़ा अच्छा लिसनर है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नज़ीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान से सुनते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हुमैरा फयाज, आई एम फाइन, सलीम हनीफ हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, लिसनिंग यू अगेन फ्रॉम लाहौर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं। अकबर खान साहब कहते हैं इस्तकामत वो खामोश ताकत है जो इंसान को हर हाल में साबित कदम रखती है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, 110% यू आर राइट। अच्छा जी, लाहौर वाले मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं जी। गाना मुक गया, पता ही नहीं चल गया पाया।

0: तेरा पूछा था, नहीं मैं नहीं कर सकता यार।
1: हाँ
0: क्यों नहीं कर सकते यार, तुम तो बात तो उसकी बात करते हो, तुम इस भी बात करते हो, यू वॉन्ट हर और हिम इन योर लाइफ। नहीं वो ठीक है, वो स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी थी कि उसको रिकंसिडर मैं करता हूँ, लेकिन अब मैं फील नहीं करता, ना हो सकता। सो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक ये कि उसका चले जाने के बाद आपको उसकी कमी का महसूस होना, यानी उस जैसा कोई ना मिलना या उससे बेहतर ना मिलना। दूसरा ये कि एक आपका माइंड क्रिएट करता है आपके लिए किसी के जाने के बाद सिचुएशन के, यार वो चंगा सी, वो ही अच्छा था। इसी तरह से जिस तरह से हम कहते हैं हमारा बचपन अच्छा था आज वालों से, हम फिजिकल एक्टिविटी करते थे, हमारे अम्मी अब्बा कहते हैं उनका बचपन उनसे अच्छा था, जो आज गुजार रहे हैं उनके लिए उनका बचपन अच्छा है। इसी तरह से हर दौर में गुजर जाने वाली मूवमेंट्स, हर बंदे का माजी उसको अच्छा लगता है, वो चाहे किसी फर्द की शक्ल में हो या एक्टिविटी की शक्ल में हो। व्हेन यू रिकॉल इट यू लव इट, अनलेस के कोई बहुत ही वर्स सिचुएशन ना हुई हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी और इमोशनल तकलीफ ना पहुंची हो।
1: अभी मैं उसी तरफ आने वाला था।
0: आप पहले एक काम करें,
1: इधर
0: आप
1: इधर
0: इस माइक चले
2: जागते रहना, मैं इधर ही हूँ।
0: नहीं लाइव चलाओ आज फिर,
3: और सर चलाओ
0: कहना चाह रहे नहीं, मैं कहूँगा नहीं आगे।
1: हाँ ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। दर्द इतना था कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जहाँ से उलझना चाहा, हर बुने मुंह से टपकना चाहा। नहीं ये नहीं करूँगा मैं, शायरी नहीं करूँगा।
4: नहीं नहीं सर सुना दें, सुना दें। अभी वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप कुछ सुनाएंगे और वो ना फिट करेगा।
5: मैं रिलेट कर गया आपकी बातों से सर, बड़ी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और आपने उसमें इजाफा किया। मुझे भी एक वक्त आया अपना याद कि शायद मैं गलत था या वो गलत था, इस तरह की बात। तो
1: ये जो रिलेट कर जाना होता है ना, यही सब कुछ होता है मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें इस तरह का एहसास भी दिलाती हैं, जैसे अभी डॉक्स ने एक अलग पहलू जो है वो वाजे किया, एक अलग पहलू की तरफ नज़र दौड़ाई कि वो जो कीमती है वो हो सकता है उसको लगता हो कि वो कीमती है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उस इंसान की तरफ से भी सोच रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इस तरह के माहौल होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम ना जैसे किसी घुटन में हों, जैसे कोई हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर रहा हो कि हम कहीं से जा ना सकें, हम ताज़ा हवा के लिए भी उसके मोहताज हो जाएं, सांस लेने के लिए भी हमें उससे पूछना पड़े कि ले लूं सांस, तुम अगर इजाजत दो। कोई बाज़ औक़ात इतना टॉक्सिक भी हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये लग रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूं इसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूं।
5: ऐसे ही है,
1: उसे इस चीज का अंदाजा नहीं हो पा रहा होता, वो कंट्रोलिंग फेज में आ चुका होता है। उसे लगता है कि मैं इसके साथ जितना मुखलिस हूं कोई हो नहीं सकता। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सोचते हुए बाज़ औक़ात वो वाले काम, वो वाली चीजें भी कर जाता है जो तकलीफ दे होती हैं।
4: ऐसे ही सर, जैसे आपने बोला है कि सामने वाला बंदा जब कंट्रोलिंग हो रहा होता है, वो जब चाह रहा होता है कि मैं आपको कंट्रोल करूं और आपकी हर छोटी छोटी चीज पे आपको मैं टोकूं कि ये ना करो, ये ना करो, आज ये पहन लो, आज मैंने ये पहना है तो तुम ये पहनो अच्छे लगेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन सम टाइम अगर हम ऐसा करें उसी शख्स के साथ, क्योंकि वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना हम उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं,
1: बिल्कुल,
4: हम उसे बोलें कि यार आज तुम ये कर लो,
1: आज तुम मेरी पसंद के कपड़े पहन लो,
4: आज तुम मेरी
1: या मेरी पसंद से ये काम कर लो,
4: बिल्कुल,
1: तो वो ट्रिगर हो जाता है,
4: वो ट्रिगर
1: तुम ऐसा मुझसे कैसे कह सकते।
4: हाँ, और इन इस चीज में फिर क्या फर्क आपको महसूस होता है? जैसे अभी इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि मुझे मेरी एक शर्ट नहीं मिल रही, बहुत टाइम से पड़ी हुई है, मुझे नहीं मिल रही। मुझे वो महसूस होता कि यार वो किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, लेकिन जब वो मुझे मिल जाएगी ना,
1: हाँ यार थैंक यू,
4: जब वो मुझे मिल जाएगी वो फिर मुझे उसकी वो उतनी कदर नहीं होगी यार, हाँ चलो ये मैंने 6 दफ़ा पहन ली है या मैंने 7 दफ़ा पहन ली है, अब छोड़ो क्या करना है। तो कंट्रोलिंग फेस में मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रोल करेंगे ना, हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा कि हम सामने वाले को कंट्रोल करें, हमारा सजेशन होगा कि यार आज चलो यहाँ चलते हैं, तुम्हारी मर्जी की जगह पे नहीं चलते, आज मेरी मर्जी की जगह पे चलते हैं, तो सामने वाला बोलेगा यार नहीं तुम तो हमेशा ये करते हो या तुम तो चाहते ही ये हो, तो उसमें हमारे लिए क्या बेहतरी है या हमें उस चीज में उसको कैसे टैकल करना चाहिए।
1: मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बात को ना समझ चुका हूँ। अब ये वो मौका है जहाँ से अल्फाज वाज़े नहीं है लेकिन दिल के अंदर एक ख्याल जारी है, दूर होने का ख्याल यहां से पैदा हो चुका है, चाहे आप कितना ही सोच लें कितना ही कह लें, दिल के अंदर जब ये पहला ख्याल आया ना कि यार वो टॉक्सिक हो गया, अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं तो वो उस तरह से करना नहीं चाह रहा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना दिल के अंदर दूरियां पैदा होने शुरू हो जाती हैं।
4: बिल्कुल,
1: ये ना वन वे ट्रैफिक नहीं है।
4: नहीं है।
1: अच्छा, ये किसी भी ताल्लुक में वन वे ट्रैफिक नहीं होती।
4: नहीं होती।
1: ये हम ये समझते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे माँ बाप और औलाद के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो वन वे होता है या सिर्फ एक ही तरफ से तमाम चीज़ें सोची जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। मेरे जो इनबॉक्स के मैसेजेस हैं ना वो लोगों के बच्चियों के बच्चों के मैसेजेस से भरे हुए हैं कि टॉक्सिक हैं हमारे वालदैन, वो इतने टॉक्सिक हैं कि हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, अपने मन की दिल खोल कर ये बता भी नहीं सकते हमारे दिल में ख्याल क्या पैदा हुआ है। हम यहाँ पे शादी जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं हमारे अंदर क्या ख्याल है। बच्चियों के बहुत सारे मैसेज ऐसे कि रहमान साहब इसका कोई मशवरा दें, इसका कोई हल बताएं कि हम कैसे उनको बताएं कि हमारे दिल के अंदर ये हालत पैदा हो रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने कभी कोशिश की, चलो जैसा भी इंप्रेशन पहले तुम्हारे पास था उनका, तुम्हारे वालदैन हो या कोई भी जिसने तुम्हें पाला जिसने तुम्हें बड़ा किया, जो ये समझता है कि मैंने अगर इस पर ये तमाम चीज़ें खर्च की हैं पैसे दिए हैं तो अब मेरा ये हक और फर्ज यही बनता है कि मैं ही सब कुछ करूं, उससे राय भी ना पूछूं मैं।
4: सर मैं आपकी बात समझ गया हूं।
1: हाँ।
4: लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि माँ बाप, आपने जैसे अभी जिक्र किया माँ बाप का, माँ बाप ने हमें पाला बचपन से, हमें जानते हैं, हमें माँ ने 9 महीने पेट में रखा, फिर उसके बाद बाप ने हमारी परवरिश की, हमें बड़ा किया, इस काबिल किया कि हम कहीं बैठें कहीं स्टैंड करें। हम कैसे किसी ऐसे शख्स के लिए उनकी कीमत को,
1: शख्स की बात नहीं कर रहा मैं,
4: किसी के लिए
1: नहीं, मैं शख्स की बात नहीं कर रहा, बात हो रही है सिंपल कि अगर एक लड़की, मैं लड़कों की बात नहीं इस वक्त कर रहा, सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों के मामलात में ना वालदैन का एक अलग नजरिया होता है कि वो तो लड़का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: सर मैं इंपॉर्टेंस की बात,
1: हाँ मैं उसी तरफ आ रहा
4: हूँ, कम कैसे हो जाती है,
1: मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं लड़कियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये बताना है कि पूछ लेना बहुत जरूरी होता है।
4: बिल्कुल,
1: अगर आप किसी के लिए कुछ तय कर रहे हैं ना,
4: बिल्कुल
1: ये नहीं कहना होता कि कर दिया तय बस, अब हमें पता है, हमने दुनिया देख ली, हमें पता है तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत, तुम्हें कुछ नहीं पता।
4: बिल्कुल,
1: पूछ लेना जरूरी होता है, हो सकता है उसका जवाब हाँ ही हो, सिर्फ इस चीज की एक जरूरत हो, एक लफ्ज की कि बेटा ये पसंद किया है, तुम्हें पसंद है क्या, तुम करना चाहती हो वहां पर शादी, क्या तुम जा सकती हो वहां पर, अपनी जिंदगी मुकम्मल गुजार सकती हो, क्योंकि बेटा हमने ना हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहना वहां पर।
4: सर लेकिन
1: तुम्हारे ख्यालात क्या हैं शादी को लेकर, तुमने क्या सोचा है, कैसा तुम्हारा माइंडसेट, कैसा हमारे बच्चे जो होते हैं ना, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमें सब पता है उनके बारे में, लेकिन नहीं पता होता कई बार हमें। मैं रियलिस्टिक रह के बात कर रहा हूं,
4: बिल्कुल
1: मैं ये नहीं देख रहा इस वक्त दुनिया मुझे देख रही है तो मुझे वो बात करनी है जो सब लोग कहें हाँ जी ये अच्छी बात है ये ठीक है, नहीं, रियलिटी बेस्ड बातें करनी होती हैं हमें।
4: सर लेकिन सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है,
1: ये तुम अब वहां पे पहुंचे हो, अब वहां पे पहुंचे हो, सोसाइटी का एक प्रेशर
4: है, माँ बाप ने आपके लिए कोई तय कर दिया और आपको बता दिया कि यार बेटा मैंने ये किया है, बेटी ने सवाल पूछा कि आप मेरे से पूछ लेते हैं, या जैसे आपने बोला कि शायद उसका जवाब होता हाँ ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो آپ کی خوشی آپ کی ترقی کو نہیں برداشت کرتے.
1: بالکل ایسے ہی
4: وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یار تو اینو پالیا ہے تو تو اے دیکھو کیوں پوچھ رہے ہیں تو کیوں تو کیوں پوچھ رہے ہیں تو اے دا ماں پیو ہے یا او تیرے او تیری ماں ہے.
1: یہاں پہ والدین کو کیا کہنا چاہیے؟
4: والدین کو یہاں پہ اپنی اولاد کو پریورٹی دینی چاہیے.
1: ہاں
4: انہیں انہیں والدین کو ان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے جو وہ شروع سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں. ان نے وہاں پہ ان کا جواب میرے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے اسلام کا کچھ اور ہو
1: تمہارا
4: سکتا
1: کیا
4: ہے. میرا یہ ہے کہ ماں باپ کو پوچھ لینا چاہیے. سوسائٹی جیسے مرضی آپ کو پریشر کرے آپ نے اپنے بچوں کی طرف ہی دیکھنا ہے نا. ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت امیدیں ہوتی ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں اب وہ ہاں کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ اچھا ہے آپ انہیں آپ اپنی اولاد کو انسسٹ کر سکتے ہیں فورس نہیں کر سکتے.
1: بہت خوبصورت بات
4: کہ یار نہیں نہیں ادھر ہی کرو. آپ انہیں انسسٹ کریں انہیں نہیں سمجھ آتی پھر آپ ان سے ان کی رائے لیں کہ ہاں اگر تمہاری زندگی میں کوئی
1: تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تو پتا چل جائے کہ میری بیٹی نے جہاں پہ رہنے کا سوچا ہے یا جس طرح سے رہنے کا سوچا ہے
4: بالکل
1: وہ کیسا تصور ہے وہ کیسا خیال ہے.
4: بالکل
1: اس میں شرم کس چیز کی؟ معاشرہ اس میں کہاں میں بیچ میں آ گیا؟ معاشرے کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے کبھی. یہ اب یہ سوچنا تھوڑی سی چینج ہونے لگی ہے. اب لوگوں کے اندر نا یہ چیز آنے لگی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں کہ نہیں ہاں یار ہمیں سوچ لینا چاہیے ہمیں پوچھ لینا چاہیے ایک بار. اب میں ایک بہت بڑی مثال میں اس میں بہت سارے معاملات میں انوالو رہا. ایک عورت کے ساتھ اس کی شادی صحیح سے نہیں چل پائی. ایک عورت کے ساتھ اس نے اکیلی نے سنگل پیرنٹ اس نے اپنی بیٹی کو پالا اس نے بڑا کیا گریجویٹ بنایا اس کے بعد ایک گورنمنٹ کی جاب وہ مل گئی اسے بڑی ارلی ایج میں یعنی کہ 21-22 سال کے اندر ہی اور پھر وہ کرتی رہی جاب. لیکن کیونکہ اس کا ایکسپیرینس غلط ہو گیا تھا آنے والے 20 سالوں تک یعنی تقریباً 40 سال تک ہر رشتے کو اس نے یہ سوچ کر ٹھکرایا کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا میری بیٹی کے ساتھ بھی غلط ہوگا. کیا یہ ناانصافی نہیں
4: ہے؟
1: کیا یہ 5 fingers آر ایکول کہ ساری کی ساری جو انگلیاں ہیں وہ برابر ہوتی ہیں؟
4: نہیں.
1: وہاں پہ ایک وقت آیا کہ مجھے بیچ میں آنا پڑا. میرے سامنے آئے فین تھے محبت کرتے تھے جاننے والے تھے دوست کے مطلب کہ فیملی ممبرس تھے دور کا رشتہ تھا. یہ اس طرح سے آپ کو وہ سنتی ہیں اور آپ سے ایک بار ملنا چاہ رہی ہیں بیٹی ملنا چاہ رہی ہے آپ سے. میں نے کہا اچھا کیا ایج ہے ان کی؟ وہ 40 سال ایج ہے اور وہ گورنمنٹ جاب کر رہی ہیں ایک اچھے عہدے پر ہیں. لیکن وہ جو آپ والی بات میری ماں اگر میرے بارے میں سوچ رہی ہے تو اچھا ہی سوچ رہی ہوگی. وہ کیوں میرے بارے میں غلط سوچے گی؟ وہ کیوں میرے بارے میں غلط کرے گی؟ ہر جگہ پہ ایک ہی نظریہ نہیں ہو سکتا چینج ہو سکتا ہے. اس نے وہ میرے پاس آئی یہاں پہ اس نے کہا کہ اس طرح کے معاملات ہیں پچھلے 20 سال اس طرح سے گزرے ہیں. کبھی کسی میں یہ والی خامی نکل آتی ہے کسی لڑکے میں یہ والی خامی نکل آتی ہے. میں دیکھ کر اگر کسی کو پسند کر لوں اس کی پروفائل میں بہت کچھ لکھا ہو اگر ٹیلی فونک رابطے میں ماں سے کہوں کہ یہ بات پوچھ لیں کہ کیا لڑکے کو یہ چیز پسند ہے میں اس طرح سے رہ رہی ہوں میں یہ ایڈجسٹ کر سکتی ہوں میں یہ کمپرومائز کر سکتی ہوں میں وہ بھی اتنا کر سکتا ہے کچھ میرے لیے یا نہیں کم از کم مجھے جاب کرنے دے گا یا نہیں. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ماں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر وہ اسے روک دیتی تھی شادی سے. اینڈ کیا ہوا کہیں پہ ایک لڑکے نے ان کے سامنے آ کر یہ بتایا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں بہت عزت اور احترام کے ساتھ. یہ بشرمی والی بات نہیں میں کر رہا پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے. بہت عزت اور احترام کے ساتھ جا کر بتایا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں. وہ ڈر گئی ایک دم سے کہ میری تو والدہ پچھلے ایک وقت آتا ہے جب بچوں کو بھی نا آنکھیں اچانک اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا مطلب دکھا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے ہے کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی بنانی ہے جیسے اس کی والدہ کو بنایا پیدا کیا بڑا کیا پھر شادی ہوئی تمام معاملات خراب ہوئے اچھے ہوئے غلطیاں دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہیں.
4: بالکل
1: ہو سکتا ہے جو شادی جو ہے وہ اگر اس میں کوئی پرابلم آئی تو وہ ہو سکتا ہے ان کی بھی غلطی ہو. یہ ضروری ہے کہ صرف مرد کی ہی غلطی ہے کہ وہ مطلب کہ چلا گیا تو بس وہی غلط ہے؟ نہیں, بعض اوقات غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. میرے پاس آئی انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے معاملات ہیں. لڑکے کو یہاں پہ بلایا لڑکا یہاں پہ بیٹھا تھا اور اس لڑکی کے جو بولے ہوئے مطلب ماموں وہ یہاں پہ بیٹھے تھے میرے پاس. پروگرام میں شامل نہیں ہوئے وہ صرف سامنے میں پروگرام کر رہا تھا بیچ میں باتیں چل رہی تھی. میں نے اس لڑکے کو دیکھا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا چیزیں چیک کی बहुत साफ बहुत अच्छा नजर आया। मैं उस लड़की की वालदा के पास चला गया। अब वो वालदा क्या कह रही है, मजे की बात सुने आप, ये लड़का मतलब बात हो रही है, कुछ चीजें चल रही है, लेकिन वो नक्स उसमें भी निकल आए कि यार ये कद छोटा है इसका, नहीं तुम्हारे साथ सूटेबल नहीं है, मसला है, ये प्रॉब्लम है, चीजें बाजू कदम कद को भी बीच में ले आते हैं। 5'7" है तो 6'1" चाहिए हमें, 5'3" है तो 5'7" 5'8" चाहिए हमें, हमने ये चीजें देखनी है। ठीक है, एक अलग चीज है वो, एक अलग तरीके से अगर हम सोचें तो वो ठीक हो सकता है कुछ चीजें, कि उसमें हदीस में भी है कि कुछ चीजों को देखकर बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन मैंने हर मायार पे उसको परखने की कोशिश की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कोई इज्जत करना जानता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ इश्क और मोहब्बत में सबसे पहले इज्जत आती है,
6: अदब पहला
1: करीना, अदब सबसे पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आपको अगर कोई इज्जत दे रहा है ना, अच्छा मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि तकरीबन 3 साल हो गए उनकी शादी को, और 2 बेटे हैं, 1 बेटा 1 बेटी है उनका, इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजर रही है, हर स्टेटस मेरा दोनों देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी शादी में उनकी वालदा शामिल नहीं हुई। अब वो बाद में ये पछताती हैं ये सोचकर कि यार मैं मुझसे गलती कहां पे हो गई। कई बार हम इस तरह से कर बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत सारी गलतियां हमसे सरजद हो जाया करती हैं, तो हमें उस चीज को, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना अदब वाले, जिन्होंने तरबियत अल्लाह से पाई होती है, चाहे बहुत सारे मामला खराब हो रहे हों घर में, तो वो फिर भी माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो आज भी अपनी वालदा की इज्जत करती हैं, उनके ही घर में वो वहां पे वापस जाके वहां पे, क्योंकि सिंगल पेरेंट थी तो उन अपने पास ही उन्होंने रखा उन्हें, और अब बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजर रही है। लेकिन मामलात में बहुत सारे इस तरह के उतार चढ़ाव आए, जहां पे जाकर एक जगह पे कोई इंसान बिल्कुल भी वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तस्लीम नहीं कर रहा। मैं जो सबसे बड़ी बात बताने वाला था, मैं गया उनसे मिलने के लिए, वालदा कहती ये देखो कितना अच्छा कद है, इसके साथ क्यों नहीं कर लेती तुम। मजे की बात, आप चेक कर रहे हैं कि कैसे कोई इंसल्ट कर सकता है किसी की, या किस तरह से कोई ये सोच सकता है, और सामने कैसे बोल सकता है ये तमाम चीजें।
6: बिल्कुल,
1: आप अगर इस तरह की कोई चीज जहन में आई भी है तो आप जरा थोड़ा सा छोड़ दें कि बात कहां पे चल रही है और हम बीच में क्या चीज लेके आ रहे हैं। लेकिन आज वो ही सबसे ज्यादा दुआएं देती हैं, मेरे को तो नहीं हो सकिया बेटा, हूं तू कम अज कम ये फैसला कर लिया। बाज़ुकात हमें ना कुछ फैसले करने पड़ते हैं
6: सर, वो
1: और वहां पे एक जगह पे आके उस लड़की ने भी क्या किया, एक जगह पे आके हम स्टैंड नहीं लेना जानते, बहुत सारे टॉपिक्स निकल रहे हैं बीच में से, हम स्टैंड नहीं लेना जानते अपने बातों के ऊपर ना। अब जब सब कुछ तय हो गया तो वो लड़की कहती मुझे कि रहमान भाई आपकी जिम्मेदारी है सारी। अब समझ आ रही है आपको बात,
6: हाँ जी, हाँ जी,
1: कि आपकी जिम्मेदारी है सारी, अगर वो लड़के में कोई प्रॉब्लम निकली तो मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा रहने दो, डायरेक्ट कहा, मैंने कहा तुम्हारे लिए तुमने सब कुछ प्लान किया, कुछ चीजें अल्लाह पे भी छोड़ दो।
6: बिल्कुल,
1: अल्लाह माफ करे, मतलब कि मैं ये बात कह रहा हूँ, हर चीज ही अल्लाह पे छोड़नी चाहिए। तो ये कुछ चीजें कुछ मामला जो है, अगर एक जगह तक पहुंच चुके उसके बाद ये सोच लो कि यार हमने अपनी तरफ से प्रॉपर कर लिया, अब हम अल्लाह के सपुर्द करते हैं। सब चीजें जब अल्लाह के सपुर्द कर दी जाएं तो सब चीजें ठीक हो जाती
6: हैं, अच्छे नतीजे आते
1: हैं। अगर आप किसी जगह पे गलत हो, कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, आपने अल्लाह पे छोड़ा हो, वो ऐसे अचानक निकालता है आपको रास्ते आपके उससे दूर करने के, वो जो कीमती अपने आप को समझ रहा हो सकता है वही टॉक्सिक हो। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे आप
6: सर, मैं ये मतलब
1: बात जरा मेरी लंबी हो जाती है, मतलब डिस्कशन करने वाला बन रहा हूं, लंबी डिस्कशन चल जाती है मेरी
6: आपकी, मतलब मैंने पूरा जवाब सुना है आपका और बड़ा मतलब मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपके इस थॉट से और आपके जवाब से। मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर हम खामियों की बात करें ना, तो हमें सामने वाले से पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि यार मेरे में ये प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साथ ये हो गया है तो उसके साथ नहीं होगा। या हर मतलब सोसाइटी में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, जैसे आपने अभी एक बात की, मैंने भी अपने सराउंडिंग्स में 2-3-4 लोग ऐसे देखे हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं और उन्होंने मतलब अपनी बच्चियों को जवान किया, लेकिन शादी पे आके वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
1: हाँ, ठीक
6: है, वो ये कहते हैं कि मतलब लड़के में ही कोई ना कोई बुराई है, ये मसला है या वो मसला है, जो भी बहरहाल उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वहाँ पे। लेकिन इंसान अगर सबसे पहले अपने अंदर झांक के देख ले ना, अपनी खामियां दुरुस्त कर ले,
1: हाँ,
6: तो वो उसे फिर सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही,
6: उसे सारे अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, और उसका जब आपको कोई शख्स अच्छा लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप उसकी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं आप उसे भूल जाते हो।
1: ये रिश्ता ना इसमें इतना खूबसूरत है, ये ताल्लुक, मैं अभी शादी के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये ताल्लुक इतना खूबसूरत है, रब इसको इतना पसंद करता है इन इन इन चीज़ों को, कि मामलात अगर शुरुआत में थोड़े से अनस्टेबल भी है ना, ऐसे भी हैं जो थोड़े से टॉक्सिक लग रहे हैं, लेकिन उसकी रहमत के साए में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो पक्के पांडे वाली बात नहीं है, आप चेंज होना चाह रहे हैं, हर दो सेकंड के बाद आप ये सोच रहे हैं अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ और माफ़ी मांग ही लूँ।
4: सर एक बात है, मैं अपने रिलेटेड ये बात करूंगा, खुद
1: बहुत अच्छा कर रहे हो तुम अपनी बात कर रहे हो,
4: बात करूंगा अपनी फैमिली को देखते हुए ये बात करूंगा। मेरे माँ पेरेंट्स की शादी अल्हम्दुलिल्लाह 42 इयर्स हो गए हैं।
1: अच्छा माशाल्लाह।
4: ठीक है, मैं शादी के 18 साल के बाद पैदा हुआ।
5: माशाल्लाह लाडले हो गए आप तो।
4: उन जो वो 18 साल थे ना, 18 साल, मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि इतना प्रेशराइज किया गया मेरे वालिद को कि दूसरी शादी करें, दूसरी शादी करें, दूसरी शादी करें।
1: यस यस,
4: इतनी टॉक्सिसिटी वो आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा। हम सुनते हैं ना, हमें रोना आ जाता है कि यार कैसे मेरी माँ ने 18 साल बर्दाश्त किया है
1: और उस वालिद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि मेरे वालिद फरिश्ते हैं मेरे लिए, मेरी वालिदा मेरे लिए फरिश्ते हैं। उन्होंने 18 साल सब्र किया, मेरे वालिद ने सब्र किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके दरमियान में वो मिसकम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। अगर किसी ने बोला ना मेरे वालिद को ऐसे कर लो, उन्होंने मेरी वालदा से बात की, मेरी वालदा ने और मेरे वालिद ने मिलकर आपस में उसको चीज को डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया, खत्म किया। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे मतलब जो खामी है हर पेरेंट्स में होता है कि मतलब अब मैं मुझे थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ।
1: हो सकता है, हो सकता है कुछ खामियां होती भी हैं,
4: होती हैं, लेकिन
1: ये हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई खामी ना हो।
4: ऐसे ही है,
1: आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियां भी हमारे अंदर शामिल होती हैं।
4: यहाँ पे मैं वो सोसाइटी के प्रेशर की बात कर रहा हूं जो मैंने पहले जिक्र की है कि अगर मेरे वालिद वहां पे वो प्रेशर ले लेते तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट
1: होती है।
4: लेकिन वो उन्होंने प्रेशर हैंडल किया और उन्होंने मुझे भी अब फ्री हैंड दिया हुआ कि यार तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो करो,
1: क्योंकि वो प्रेशर देख चुके हैं कि बच्चों पे किस तरह से होता है।
4: बिल्कुल, और मुझे आज तक, मैं आई एम 24 राइट नाउ, मुझे आज तक कभी प्रेशराइज नहीं किया। मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट किया है। मैं अभी HEC का पंजाब लेवल टूर्नामेंट खेल कर आया हूँ। उन्होंने हर जिंदगी के हर छोटे से छोटे मोमेंट में और बड़े मोमेंट में मुझे सपोर्ट किया है और मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल अगर सुन भी रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू। और थैंक यू सर, आपने ये डिस्कस किया। मैं
1: ऐसे वालदैन जो होते हैं ना वो वाकई में एक अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र हमेशा दराज करे, सारे वालदैन की उम्र दराज करे। और बहरहाल हाँ, इस्लाम तुम्हारा क्या कहना है, क्या ख्याल है तुम्हारा?
7: सर मेरे ख्याल से जो हमारा टॉपिक है आज का वो कहाँ से शुरू हुआ मुझे थोड़ा सा मिसिंग है, और दूसरा ये कि हमारा बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो भी मिसिंग है आपके शो का।
1: अच्छा अभी इस वक्त ना बिल्कुल अच्छा मेरे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक
7: 45 मिनट है
1: अब जब डॉग्स बीच में मुझे यहाँ पे, अच्छा मैं तो जरा तुम्हें पता है किस तरह से चीज़ें होती हैं, ये टॉपिक ना मुख्तलिफ करवटें बदलता है, ये चेक करना होता है कहाँ पे है हम
7: सही।
1: ये जरूरी नहीं होता कि उसी चीज के साथ स्टैक हम कहाँ से निकले कीमती होने से और फिर हम एक तरफ से कीमती जो शादी वाली जिंदगी है, एक हमने स्टोरी वो वाली शामिल की, फिर उसके बाद वालदैन की तरफ हम आए। मैंने इसलिए बताया जरा चौकस होके बैठना है इस प्रोग्राम में ना, टॉपिक एक नहीं है, हम निकलते हैं तो बहुत सारी जगहों को छूते हुए गुजरते हैं। अभी एक ट्रैक प्ले करें उसके बाद फिर वापस आते हैं। और हाँ ले देखो सामने खफा पड़ा हुआ है जो कल डेडिकेट किया था ना मेहर ने,
7: ये
1: हाँ ये वाला ट्रैक प्ले करते हैं, वापस आते हैं और फिर चलो मैं एक नया टॉपिक जो है ना वो अपने प्रोग्राम वाला वो वाला बीच में शामिल करते हैं।
7: आज मैं सजेस्ट करूंगा टॉपिक।
1: अच्छा
7: हाँ जी,
1: वैसे कई बार तुम सजेस्ट कर चुके हो मुझे।
5: टॉपिक से पहले मैं भी एक बात बीच में करना चाहूंगा कि
7: हम बड़ी थकी रहेगी,
5: हम नौजवान हैं, हमने शादी करनी है तो ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल है।
1: हाँ, फैसला लेना मुश्किल,
5: इसको सोचना मतलब कौन आपके लिए ठीक रहेगा, बाद की जिंदगी कैसे,
1: तुम्हारे लिए माँ बाप को फैसला करने देना भाई।
5: नहीं मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ।
1: हाँ, ठीक,
5: क्योंकि इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरी तरह कई नौजवान ऐसे हैं जो इस चीज को सोचते हैं कि यार कैसे फैसला करना है, किस तरह की चीज होगी, पहले से सोचते हैं जो, उस पर आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे क्योंकि आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं।
1: ये ना बड़ी खूबसूरत बात इसने की, इसी को टॉपिक बनाया अभी
5: बना
1: कि शादी किस इंसान से करनी चाहिए, उससे पहले क्या सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए
5: ऐसे ही है,
1: जिससे लोगों को ये मदद मिल सके कि वो कैसे चूज करें।
5: हाँ, बिल्कुल
1: सही है। चलो एक ट्रैक ये वाला सुनते हैं, उसके
7: एक मैं बस लास्ट
5: चीज ऐड करना चाहूंगा,
7: पहले आप ट्रैक
1: सुनाए तो चला
7: पता नहीं है ना असद भाई कब निकाल दें। अच्छा लास्ट थिंग जो मैं,
1: हमने खुद ही निकालना है, उन्होंने नहीं निकाला।
7: लास्ट थिंग जो मैं शेयर करना चाहूंगा इस पे इज बेसिकली कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को इतना कीमती समझते हैं लेकिन वो बाकियों के लिए नहीं होते। एंड नहीं मैं इस पे एक पोएट्री मेरे सामने आ गई, मैं तब से लेके बैठा हूँ, आगे पीछे ना हो। सो
1: पोएट्री करो ना।
7: हाँ नहीं मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ ना।
1: अच्छा बैकग्राउंड दूँ फिर मैं कोई।
7: उस पे बेसिकली होता ये है कि आप स्टबबोर्नेस की ऐसी हाइट्स पे चल जाते हैं देन आपको सिर्फ अपना आप दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी स्टेट में जाके ये लिखते हैं कि मैं इतनी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ, कोई मुझसा ना मिला जब खुद अपने कदमों में सो गया हूँ।
1: ठीक है।
7: मैं अब अज़ियत का पीर हूँ जी, मैं आशिकों का फकीर हूँ जी, कभी मैं हैदर कभी अली हूँ, जो भी हूँ अब खीर हूँ जी। सो बेसिकली ही वांट्स टू से के व्हाटएवर आई एम इट्स मी, एंड आपको इससे भी बाहर आना चाहिए। एंड सोसाइटी के प्रेशर की बात हो रही थी, डोंट टेक इट, क्योंकि अभी आपने बात की एंड बिलाल ने की, मेरे सामने का एक ये वाक्य है कि एक जो मेल हैं उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आपकी क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑफस्प्रिंग तो आप दूसरी शादी कर लें। एंड उन फीमेल की मैंने खुद एक दरबार पे मैंने ये आवाज़ सुनी थी कि मुझे कुछ ता हो जाए एंड उसके बाद वो मर जाए ताकि जस्ट ये पॉइंट प्रूव हो जाए कि आई कैन गिव डैट। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है बहुत सी चीज़ों में मरवा जाता है जो कि आई थिंक अब हमें से बदलने की ज़रूरत है।
1: हाँ एक जुगत आई है कर लो
7: प्लीज
1: क्योंकि जरा ना ये एक मिनट ठहरो, एक एक जुगत आई है मुझे कहिंदा इनू वेखण आए, इनू वेखण आए दिल भाई हंसना आया तुहानू कसम लगी। अदील भाई हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं इस वक्त MCR में मौजूद हैं। हाफिज थैंक यू वेरी मच, हमारी आवाज़ को आपकी समातों तक बगैर किसी डिस्टॉर्शन के प्रॉब्लम के पहुंचा रहे हैं। जुगत आई है
7: प्लीज प्लीज
1: तो मैं तुम्हारे ऊपर कर दूं।
7: डन
1: इनू वेखण आए नहीं यार
5: कर दे सर
1: तो पिछड़ गया इनू वेखण आए ते अच्छा मैं चाह रही कोई कवे कुछ इनू कुड़ी वाले वेखण आए ते कुड़ी दा भाई इनू वेख के कहंदा कि लो जी साडे वालों तो इनकार है लेकिन लेकिन मैं कितने होर होण भी नहीं दिरांदा सी कुछ। अच्छा ये ट्रैक सुनते हैं वापस आते हैं, हमने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर का बराह रास्त स्टूडियो। इस वक्त ये आवाज़ लाहौर और उसके गिरदो नवा में सुनी जा रही है। मेरा नाम रहमान अनवर है और मेरे साथ हमारे आरजेस ही कह लूँ, आरजेस बैठे हुए हैं जो अपकमिंग आरजेस। यस
5: वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे,
1: लेकिन ये ट्रैक तुम्हारे लिए है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे वाबस्ता होती हैं, बातों में तुम्हारी बातों का जिक्र ज़्यादा रहता है। उसकी वजह यह है कि आज रोशनी जल रही है, बल्कि कम कपा जल रहा है, लेकिन दीवारों पे तुम्हारा अक्स वाज़े है। बातें तो इनसे हो रही हैं लेकिन तुम्हारा ख्याल जहन में। ये ट्रैक तुम्हारे लिए।

0: right. पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत अच्छा लगा, साहिर अली बग्गा की खूबसूरत आवाज़ और अफशा फवाद को मैंने कल पहली मर्तबा सुना। ट्राई करता हूँ इसका कोई और ट्रैक भी अगर नज़र आए। अच्छा गाती है। मुझसे अभी एक फरमाइश की है, इस्लाम हमेशा मुझसे एक ही फरमाइश करता है और मैं ये सोचता हूँ कि लोग बोर हो जाते होंगे, है ना। निकल रहे हो? ठीक है, ओके, खैरियत से। अच्छा जी, BGM प्ले करते हैं और फिर
1: चले।
0: एक नज़्म जो है फरमाइश पर हमारे इस्लाम की नज़्म आपके लिए।

ऐसा ख्याल होगा जब नजर मोहम्मद राशिद ने यह नज्म लिखी होगी, जहां जाद उसने किसी को कहा होगा, यानी कि थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखा कि लोग पढ़ेंगे भी आकर। उसके घर के सामने किस तरह से वो खड़ा रहा होगा, और किसी ऐसे पहर में खड़ा हुआ होगा जहां पे उसके घर वालों को ये पता ना चल जाए कि वो खड़ा है, लेकिन वो खड़ा था कुछ मांगने के लिए नहीं, ये एहसास पाने के लिए कि शायद इसी फिजा में कहीं वो भी सांस ले रही। एक नज्म है जहांजाद, पहला हिस्सा है उसका इस्लाम की नजर है, और आप तमाम सुनने वालों की नजर, और यहां पे आरजे डॉक्स की लाइव पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबकी नजर। जहांजाद, नीचे गली में तेरे दर के आगे ये मैं सोख्ता सर हसन कुजागर हूं, तुझे सब बाजार में बूढ़े तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहांजाद, 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं, ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जाने पलट कर ना देखा, वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलू के भेजा, वो सरगोशियों में ये कहते हसन कुसागर अब कहाँ है, वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावन बनकर खुदाओं की मानिंद हुए करता। जहांजाद, 9 साल का ये दौर मुझ पे ये गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे, तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं, संगबस्ता पड़ी थी सुराहियों मीनाओ जामो सबू और फानू सुगुलदा, मेरी हेच माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे मैं खुद, मैं हसन कुजागर पाबागिल खाकबर सरबराहना सरे चाक यौलीदा मुंह सरबजानो, किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमा के गिलौला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहांजाद, 9 साल पहले तू नादान थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कुजागर ने तेरी काफ की सी उफुक ताब आंखों में देखी है वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्म जहां अब्रो महताब का रह गुजर बन गए थे। जहांजाद, बगदाद की ख्वाबगू रात, वो रौदे दजला का साहिल वो कश्ती वो मल्लाह की बंद आंखें, किसी खस्ता जा रंजबर कुजागर के लिए एक ही रात वो कोहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद उसकी जां उसका पैकर, मगर एक ही रात का जौक दरिया की वो लहर निकला हसन कुजागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं। जहांजाद, उस दौर में रोज हर रोज वो सौख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक पर पाबा गिल सर बजानों तो शानों से मुझको हिलाती, वो शानों से मुझको हिलाती, वही चाक जो सालेहा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती हसन कुजागर होश में आ, हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर भरेंगे हसन ऐ मोहब्बत के मारे, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत अमीरों की बाज़, हसन अपने दीवारों दर पर नजर कर, मेरे कान में ये निवाए हजी यूं थी कि जैसे किसी डूबते शख्स को जेरे गिरदाब कोई पुकारे, वो अश्कों के अंबार फूलों के अंबार थे हाँ, मगर मैं हसन कुजागर शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब था जिनमें कोई सदा कोई जुम्बिश किसी मुर्गे पर्रा का साया किसी जिंदगी का निशा तक नहीं था। जहांजाद, मैं आज तेरी गली में यहां रात की सर्दगू तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूं सरोमों परीशां, दरीचे से वो काफ की सी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती,
जमाना वो चाक है जिसपे जहाजात, जिसपे जामो मीना की

0: जिंदगी का निशान तक नहीं था जहाजाद, मैं आज तेरी गली में यहाँ रात की सर्दगुं तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूँ सरों में परेशान। दरीचे से वो काफ की सी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। जमाना जहाजाद वो चाक है जिसपे मीना और जामु सबू और फानूस गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे, हसन कूज अगर आज एक तौदा खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं। जहाजाद बाजार में सुबह तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर इस बार कुछ कह गई हैं। उन आंखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर तौदाए खाक में नम की हल्की सी लर्जिश, यही शायद इस खाक को गिल बना दे। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाजाद, लेकिन तू चाहे तो मैं बन जाऊं फिर वही कूजागर जिसके कूजे थे हर काखो कू और हर शहर करिया की नाजिश, थे जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शां। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाजाद, लेकिन तू चाहे तो मैं पलट जाऊं उन अपने महजूर कूजों की जानिब, गिलौला के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजहार फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस गिलौला से उस रंगो रागन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हों रोशन, कि जिनसे दिलों के खराबे हों रोशन। ये तुम्हारे लिए, वैसे मैं बीच में थोड़ा सा भूल भी गया लेकिन खैर,
1: बहुत
0: उन सारे स्वादते ने मैं
1: एक दफा सोचने पे मजबूर हुए।
2: इस्लाम रोने लगा।
0: इस्लाम बड़ा प्यारा इंसान है, बड़ा खूबसूरत इंसान है, बाजू का ऐसा हो जाता है। बाय द वे थैंक यू वेरी मच जितने भी लोग मुझे आज डॉक्स की लाइव पे देख रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। और रहमान भाई द मोटिवेशनल स्पीकर सीरियल का सीरीन काजमी ने कहा, अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना ख्याल भी सामने रख सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये सारे मैसेजेस भी पढ़ते हैं। बहरहाल यार, मेरा ना आज जो प्रोग्राम का प्लान है ना, वो बस मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइंड अप करें। कोई भी ख्याल, कोई भी बात जो इस लम्हे आपका दिल चाह रहा है करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो मैंने बस अब ये नज़्म ने ना मेरा गला ख़राब कर दिया। मैंने बड़ा इस तरह से पढ़ता नहीं हूँ, बड़ा धीमा लहजे में मैंने पढ़ी है। बहरहाल तू की गल्ला कर रहे हैं, तेरी आवाज़ें आ रही हैं थे सारी। ये माइक ऑन है। हाँ, क्या कहना चाहोगे इस्लाम
3: सर? अगर कोई कॉल आ रही है कादी वो भी ले लें।
0: अच्छा हाँ, चलो ठीक,
2: इस्लाम ने सब करवाना है आज,
3: क्या पता अच्छे कॉलर्स आज।
0: अस्सलाम
4: वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम।
4: सलीम टेलर इच्छे बाजार।
0: जी सलीम, कैसे हैं आप? खैरियत से।
4: ये जो भाई ने कहा ना कॉल लेनी चाहिए, ये इनको हम शाबाश देंगे। थैंक यू यार।
0: अच्छा यार, मैं भूल गया था सलीम, सॉरी
4: जी। कोई बात नहीं, हम भी आपकी बात सुन के गहराई में चले गए थे।
0: अच्छा, ज्यादा गहराई में जाना, वापस आ जाना।
4: इन्होंने रोक लिया हमें।
0: यार यहाँ पे ना एक रिमोट इसका पड़ा है, वो देखो किधर है।
4: अच्छा सर, ये
0: सलीम क्या कहना चाहते हो बताओ।
4: बहुत मजे की बातें की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप आए और रौनक लग गई आज डॉग साहब के साथ ही।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
4: सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपने कहा जी किसी के साथ दोस्त सफर कर लें या चाय पी लें या खाना खा लें,
0: ठीक है,
4: उसके बारे में पता चल जाता है वो कैसा बंदा।
0: ठीक है,
4: मैंने एक बंदे के साथ सफर किया, मैंने उसने मुझे ना 5-5 रुपए 10-10 रुपए में ना बहुत तंग किया।
0: अच्छा,
4: कि वो इतना कमीनी आदत का था कि उसने जो है ना मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने कहा यार आइंदा से सफर नहीं करना आपके साथ। यानी कि जहाँ पे खर्च करने हैं ना पैसे, मैं वहाँ पे दिल खोल के खर्च कर रहा हूँ। तू तो अपने 10 रुपए की खातिर इतनी कंजूसी कर रहा है कि मैंने 10 रुपए दे दे बीच मेरे लागे ने ज्यादा।
0: ठीक है,
4: तो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात होगी कि रिश्तों के मामले में कम से कम माँ बाप ना बच्चों की राय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो काइंडली जहाँ तक हमारी आपकी आवाज जा रही है पूरे पाकिस्तान में,
0: ठीक है,
4: तो ये पैगाम देंगे कि बच्चों की मर्जी लाजमी लें।
0: ठीक है,
4: क्योंकि बाद में इतनी परेशानी होती है, घर तबाह हो जाते हैं। वो जो बच्ची की शादी होती है वो कहती आते सारी कि माँ प्यो तो अलहदा कर मनो। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है,
0: ठीक है,
4: खराबी का जो बनता है।
0: ठीक है,
4: दूसरी बात ये कि,
0: और तीसरी बात भी हम कर लेते हैं आपसे, अब आप दे रहे हैं इतनी जहानत से, इतनी खूबसूरत जवाब दे रहे हैं कि कीमती शख्स को खोने के हवाले से आप क्या कहेंगे?
4: जी जब इंसान को खो देते हैं ना तो फिर अक्ल आती है इंसान को कि यार ये क्यों खो गया, मैंने क्यों गलती कर ली है।
0: अच्छा,
4: ये कभी मैं जब मेरे पास था तो इसकी इतनी मैं इज्जत करता, कदर करता। ऑनर वो होती है जो बताए बगैर की जाए, जैसे ये भाई कह रहे हैं ऑनर आपकी।
0: ठीक है,
4: तो थैंक यू सो मच। आप एक दो कॉलें ले लें, जरा मजा आ जाएगा। अनिला
0: ठीक है
4: जी, आएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
2: आपने रहमान भाई खोने की बात की, मुझे मोहसिन नकवी साहब का एक शेर याद आ रहा है, अगर तो वो शख्स वाकई कीमती है। तो वो कहते हैं, जिस पर गुजरी है वही बताए मोहसिन, होते हैं शब हिजर में जमाने कितने।
5: वाह वाह, आज ये लड़का कमाल कर रहा
0: है, आज ये लड़का शायरी में आ गया। सजाद अली लाडला हमारे साथ है। रहमान भाई आप काफ़ी वीक हो गए, अल्लाह आपको सेहत दे। नहीं, मुझे ये ज़ुकाम जो है ना, दो तीन दिन पहले हुआ है, पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। अच्छा जी, इसके बाद सजाद अली लाडला कह रहे हैं कि आरजे डॉग सर आपके नाम और रहमान भाई आपके नाम, यूँ ही उम्मीद सी जागी है तेरे आने की, वरना घर को हम ऐसे कहाँ सजाते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं सजाद अली लाडला के। बिल्कुल बजा फरमाया, अल्लाह पाक तब ही इंसान को अलग करता है जब दोनों में से एक में बुग्ज आ जाए, मुनाफ़कत आ जाए। बहुत खूबसूरत बात रहमान भाई। मेरी नज़र में वही इंसान कीमती है जो आपके साथ अच्छे अखलाक के साथ और मुखलिस हैं, जो कि आपको हकीर नहीं समझता। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये बात भी सही है, सफ़र करना एक साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, 1:40 हो गए। एक बार फिर से एसी चला तो बताया है मुझे गले ने और ज़ुकाम ने कि भाई ठीक है, क्या कहना चाहते हो लास्ट में जाते हुए?
3: सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
0: इस बार फिर कैसा, ऐसा ही हुआ है ना कि हम बैठे हैं लेकिन प्रॉपर वो वाला नहीं,
3: हाँ, नहीं हो पाया
0: फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह,
3: इस बार नहीं तो अगली बार से। ज़रूर अपना ख्याल रखें, और मैं ऐड करूं आपकी इजाज़त से कि अपनी मोहब्बतों का भी ज़रूर ख्याल रखें, कि उससे पहले कि आप अपनी कीमती लोगों को खो दें,
0: हाँ।
3: उससे पहले आप उनकी इज्जत करें, और क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं बहुत बार, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों,
0: मोहब्बत के करीनों में। यस,
3: तो उससे पहले कि आप अपने कीमती इंसान को खोएं, उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उसकी राय का एहतराम करें, और अपना जो भी इख्तलाफ है वो उसके साथ रखें, लेकिन ये कि रिस्पेक्ट का पहलू जो है वो पहले रखें। और दूसरा, मेरे अपने पेरेंट्स भी उम्मीद है सुन रहे होंगे, और बहुत सारे पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं लाहौर में, कम अज़ कम इस वक्त जितने भी सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अपने जो बच्चे हैं उनके जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं, शायद तालीम के फ़ैसले हैं या उनकी शादी के जो फ़ैसले हैं, उनमें उनकी जो राय है
0: वो भी ले लें,
3: उनको मलहूज़े खातर ज़रूर रखें, और उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि ज़ाहिर है आगे ज़िंदगी उन्होंने ही गुजारनी है।
0: बिल्कुल ऐसे,
3: तो अगर अपनी राय उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे, क्या पता वो आपकी राय और आपके फ़ैसले किसी वक्त जाके वो गलत साबित हों, तो वो बच्चे फिर आपको बददुआएँ दें या उनको अच्छा ना लगे। तो माँ बाप तो पहले ही औलाद के लिए नेमत होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की राय जरूर उनके फैसलों में उनको मुकद्दम रखें। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत खूबसूरत बात। अब आते हैं हसीब की तरफ, और जाते हुए हसीब से भी कोई पैगाम लेना चाहेंगे हम। हसीब क्या कहना चाह रहे हैं आप किसी भी हवाले से?
5: रहमान भाई, मेरा तो पैगाम जो था, जो मैं पूछना चाह रहा था, वो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, तो मैं कहता हूँ कि जाते जाते आप उस चीज़ के बारे में बता दें थोड़ा सा, ज़्यादा फिर किसी दिन बैठ के बात कर लेंगे उस पर।
0: अच्छा, शादी के हवाले से हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा ख्याल कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि हम में से सब लोग इस काबिल तो हैं कि उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में तो इल्म है ना,
5: ऐसे ही है,
0: ये पता है ना कि क्या गलत है क्या सही है। एक वो होता है जो समझता है कि सिर्फ मेरी चलनी चाहिए, एक वो होता है जो ये कहता है कि कभी मेरी कभी तुम्हारी, और इस तरह के ख्याल वाली अगर कोई लड़की अगर हमें मिल जाए, ये अल्लाह ताला का ना बहुत बड़ा इनाम होता है बाज़ औक़ात, या लड़का कोई ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल ये वाला ख्याल रखता हो कि यार अगर मैं हूँ ना इस रिश्ते में तो तुम भी दरमियान में शामिल हो, आधा तुम्हारा हिस्सा भी है,
5: ऐसे ही है।
0: तो ये ख्याल जो है ना ये सबसे पहले होना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि हमने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना। लेकिन अभी मसला क्या चल रहा है, अभी हमें मिलना पड़ता है उसके वालदैन से सबसे पहले,
5: ऐसे ही
0: वो हमें मिलने के लिए आते हैं, हमें परखने के लिए आते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मेरे जहन में जो अभी आई, ज़रूर होनी चाहिए अगर कभी लड़के वालों को लड़की वाले मिलने के लिए आए तो अपनी सारी बातें करने के बाद लड़का उनसे एक बात ज़रूर पूछे कि मेरे भी कुछ ख्यालात हैं इस हवाले से, मेरे भी कुछ दिमाग में एक स्केच बना हुआ है, अगर आप बेहतर समझें और आपको ऐसा ना लगे कि कहीं मैं आपकी इज्जत में कोई कमी वाकई नहीं कर रहा तो क्या मैं वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि शादी उसकी है ना,
5: ऐसे ही है।
0: तो ये थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए लड़के को भी ना। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि बाज़ औक़ात हमें क्लियर ही नहीं होता ये आपकी गलती नहीं है, हमें क्लियर ही नहीं होता हमें चाहिए कैसा,
5: ऐसे ही है।
0: उसके लिए सबसे पहले अपने आप को यकजा करना है, देखना है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त का लेवल है, मैं कितना किसी को ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि उसका भी हिस्सा उतना ही है, जो सामने से आएगी उसकी जिम्मेदारी भी है, और उसके साथ हंसना खेलना खुश रहना जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे ही उसको तमाम चीज़ें करवाना, क्योंकि वो घर में जिस घर से आई होगी ना बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर बैन लगी हुई होंगी, रुकी हुई होंगी, तो क्या मैं वो तमाम चीज़ें उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद अपना एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है कि मेरे जहन में मेरी बीवी का ये स्केच है कि वो ताना ना दे मुझे कभी ज़िंदगी में, वो अपने फैसले पर कायम रहे, वो बाद में ये ना कहे कि ये मेरे वालदैन ने कर दी थी शादी
5: बहुत
0: और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बहुत सारी चीजें जहन में है, लेकिन एक छोटा सा एक आपके जहन में ख्याल सोच छोड़ के जा रहा हूं कि सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि मेरे दिल में क्या ख्याल है, वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो मेरे माँ बाप का भी एहतराम करे, क्या वो अपने घर वालों को ज्यादा वैल्यू दे या मुझे भी वैल्यू दे। मैं ये समझता हूँ कि जब लड़की लड़की को लड़के के घर आना है ना, जब वो आ जाए उसके बाद वो सबसे पहले उस लड़के को रखे, और लड़की जब आ जाए ना तो लड़का सबसे पहले उस लड़की को रखे,
3: बिल्कुल ऐसे
0: कि हाँ मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी मॉम हैं, लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आ चुकी है, तो ये सबसे पहले है मेरे लिए। मैं कुछ भी हो ना घर में मामलात, अगर कोई कंबाइन फैमिली में रहता है, वो क्या कहते हैं यार लफ्ज क्या होता है, वो
5: ज्वाइंट
0: फैमिली में रहता है कोई, तो उसमें अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं, नंदे भी हैं, माँ भी है, भाई भी हैं, देवर भी हैं, सब सब लोग हैं, तो उसमें उसको ये बताना है अपनी बीवी को कि तुमने फिक्र नहीं करनी है, तुम्हारे कभी पीछे तो कभी आगे खड़ा हूँ, फिक्र नहीं करनी तुमने, परेशान नहीं होना तुमने, मुझे बताना है क्या मामला है, कहीं पे तुम्हारी इज्जत में कमी वाकई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का एहसास वालदैन को हो जाता है अगर बच्चा ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्फाज के ज़रिए से वाजे करना शुरू कर देना कि इज्जत पता चल जाए वालदैन को, हमारी तो करता ही है लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली है वो उनकी भी इज्जत उसकी भी इज्जत उसी तरह से करेगा, तो उसको बदलना नहीं है, उसको शाबाशी देनी है कि वेरी नाइस तुमने अपनी जिंदगी को बिताना है, तुमने अपनी जिंदगी को गुजारना है, तो वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि पहला रिश्ता मियां बीवी का आया है ना, बेटा हम वालदैन बने हैं अल्लाह का एहसान है, लेकिन अब तुम्हारी वो जिंदगी शुरू होने वाली है जिसकी वजह से ये तख्लीक हुई है दुनिया, ठीक है, जोड़ों में बनाया गया है, तो वो सबसे पहले है तुम्हारे लिए, वो अल्लाह पसंद कर रहा है उस वक्त, मैं बीच में नहीं आ सकता। हर किसी के लिए ये ख्याल होना चाहिए, इसमें बहुत लंबी डिबेट हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अगली जुमेरात या किसी भी जुमेरात वक्त निकाल के आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या तुम्हारे माइंड में है, हम खुल के बातें करेंगे उस पर,
5: इंशाल्लाह,
0: ठीक है ना इस्लाम।
3: और सर बीवी को भी चाहिए कि वो अपने मजाजी खुदा का ख्याल रखे, उसकी जरूरतों का,
5: वो तो उन्होंने कर दी बीच में।
0: अच्छा इसमें ना मैं कुछ थोड़ी सी चीजों का कायल नहीं हूँ, मुझे मेरा दिल ये चाहता है कि हम थोड़ा सा ना अपनी उस एक सोच से बाहर निकल आए कि
3: मेल डोमिनेंट
0: नहीं, हाँ हाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हुए मुझे मेरा दिल ये चाहता है कि हम थोड़ा सा ना अपनी उस एक सोच से बाहर निकल आए कि
3: मेल डोमिनेंट

0: जो तुम चाहती हो कि मैं मेरे मुताबिक चलो, उसमें मैं तुम्हारा हिस्सा भी खा रहा हूँ। अब तुम्हारे दिल में अगर कोई ख्याल किसी भी वक्त आ जाए कि अब मैं अपनी मर्जी से भी इस तरह से चाहती हूँ, बता देना मुझे, ये रिश्ते को और ज्यादा बढ़ाता है।
1: और जैसे ही कह रहा है मेल डोमिनेंसी, वो ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा खवातीन बाहर नहीं जाती, तो जो चीजें मेल्स को पता होती है ना, वो उनको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीजें ना करो।
0: हाँ।
1: तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा डोमिनेंट हो रहा है, वो उसको पहले से बता रहा है कि हम चीजों से गुजर के आए हैं,
0: यस,
1: तो इन चीजों में ना जाओ।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: ये बात है।
0: अच्छा ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर ना, क्योंकि ज्यादा इन लड़का फिर रहा होता है और बहुत सारी चीजों का इल्म भी होता है, नजरों का इल्म भी होता है कि जहां से गुजरे हैं वो नजर कैसी है, क्योंकि वो वहां पे खुद भी रह चुका है किसी वक्त में, तो वो ये जानता है, नहीं भी रह चुका लेकिन ख्यालात का उसको इल्म है, तो अगर वो कुछ कह रहा है तो यार नाराज होने से पहले ना सुन तो लो उसकी बात
1: ऐसे
0: कि वो क्या कहना चाह रहा है, शायद वो सही कह रहा हो। शहीर,
2: बिल्कुल सर, अभी इतनी गहरी बातें चल रही हैं, मैं सोच रहा था मैं क्या ही बोलूं, बट ये जो सोसाइटी की पूरी बात चल रही है, एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हमें चाहिए कि क्योंकि वी आर द नेक्स्ट जनरेशन, हमने से आगे लेके चलना, जितने भी टैबूज बन चुके हैं उसे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम ही तोड़ सकते हैं। सो जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी हमें, उनमें से 2-3-4 अगर इस चीज़ का अहद कर लें कि वी शुड मेक दिस अ बेयरेबल सोसाइटी, लाइक अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक तरह की ड्रेसिंग के साथ कोई ओपिनियन है, आपका कुछ चीज़ों के साथ ओपिनियन है कि ये चीज़ किसी दूसरे बंदे को नहीं करनी चाहिए, डजेंट मीन कि जो बंदा वो कर रहा है उसका भी ये ओपिनियन है, उसके लिए आप बुरे हो सकते हैं। सो जस्ट लेट बी इट अ बेयरेबल सोसाइटी, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी ज़ात से मुंसलिक हो एंड आपको खुशी देनी चाहिए उसकी। सोसाइटी के बारे में पहली बात ये तो हमने कर ही दी कि सोचना छोड़ दें आप, बट इसे एक ऐसी सोसाइटी बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ताकि फॉर आवर जनरेशन, जो जिन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है उन चीज़ों से हमारी आने वाली जनरेशन को ना गुजरना पड़े। एंड इसके बाद गहरी बातें तो बहुत हो चुकी हैं, एक लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, आई लव यू मामा, मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी आ रहा हूँ।
0: अच्छा ठीक है, आखिर में इस्लाम कोई बात इस हवाले से?
3: यही कि सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और जल्दी आ जाए करें थोड़ा।
0: ठीक है, जल्दी भी आऊँगा लेकिन ये है कि ज़रूर आऊँगा। बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और अभी लाइट ब्लिंक हो रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बात ट्रिगर करती है तो लोग कॉल करते हैं, लेकिन मैसेजेस आपके नहीं पढ़ पाया, नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सबकी तशरीफ आवरी का, और मुझे ये लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है, तो उसको ना बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए चलाना है, न्यूट्रल रहते हुए, डाउन टू अर्थ रहते हुए, झुक कर, बहुत ज़्यादा ये सोच कर कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी डबल हो गई है, अब क्योंकि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए कि लगे कि ये मेरा जो ज़ाती ख्याल है ये मैं थोप रहा हूँ, नहीं। और हमें पता होता है कि न्यूट्रल रहना क्या है, बाज़ औक़ात हम नहीं जानते लेकिन हमें पता होता है, हमें वो चीज़ें तलाश करनी है, अपने साथ वक्त ज़्यादा गुजारना, और अपने आप के साथ जितना वक्त गुजरता है ना उससे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हमें मिल जाता है। बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, इस्लाम, शहीर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, वरना हम इसको ना लेकर चलते शायद 2:30 बजे तक, शायद 3 बजे तक हमें इसको लेके चलते हैं, हमें जरा थोड़ी सी आज़ादी दी हुई है आरजे डॉग्स ने,
1: ठीक है ना,
0: तो लेकिन हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट में कि ज़रूर हम कोई ऐसा मौका जो है ना वो मिले हमें और हम उस पर खुल कर बातें करें, क्योंकि डिस्कशंस मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ बहुत सारे मामलों के ऊपर, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफले मकतब समझ कर, ये सोच कर कि अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप, लेकिन अगर कोई एक बात भी किसी एक इंसान के लिए भी मशले राह हो गई, प्रोग्राम करने का यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी वेंसडे, नहीं बल्कि मंगल को, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ियान जम को सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मेरा बड़ा बड़ी है, बेस्ट फ्रेंड है, मोहब्बत भी है, भाई भी है, प्यार भी है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक उसके कहने पर, उसने मुझे कहा था रहमान तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे प्रोग्राम को लेकर चलना है, तुमने लेकर

है तो मैं उसको निभाऊंगा और उसके आने तक सिर्फ निभाऊंगा, यकीन करें। मंगल की रात 12 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हफ्ते में 3 मुलाकातें होती हैं, उसमें एक मुलाकात जो है उसमें इंटर्न्स अगर हुए तो उनसे इसी तरह जुमे रात की या बुध की ट्रांसमिशन में, 12 से 2 वाली ट्रांसमिशन में ज़रूर मुलाकात करेंगे गहरे टॉपिक्स के ऊपर। आज बहुत सारे टॉपिक्स थे लेकिन यकीन करें कि एक टॉपिक चल रहा था उसको लेकर हम चल निकले, तो बातें उस पर हमारी हुई, फिर भी 153 हो ही गए इस्लाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हम नासिर।

वो जिसके ज़ेरे नगीं जहानों का सिलसिला है, उसी की अज़मत में ज़र्रा ज़र्रा झुका हुआ है। ये चांद, सूरज, सितारे, कलियाँ, पहाड़, जुगनू, रवां रवां मुमकिनात आलम में ये निदा है। रुआ रुआ कारवान हस्ती का कह रहा है,

उस मोहब्बत करने वाले के नाम से आगाज़ करते हैं जो हमारे साथ 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है।

जो इंसान के चरागे दिमाग में शमे अक्ल रोशन करता है और उसे जामियुल कमाल बनाकर यूँ संभाल लेता है, गोया कतरे को सदफ पारे में ढाल देता है।

मुस्कुराते जगमगाते सब हसीन चेहरों के नाम, मुश्तबा हैदर का सब अहले मोहब्बत को सलाम। जी हाँ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुंजा शौक और आपका मेज़बान मुश्तबा हैदर हाजिर।

प्रोग्राम के आगाज में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुशखुरम रहिए, शादो आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते, खिलखिलाते, जगमगाते, झिलमिलाते रहिए।

आप हमें सुन सकते हैं radio.gov.pk पर। फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, और इंस्टाग्राम के जरिए। इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।

ये जो साथ होता है ना, ये सांस से कम नहीं होता। और जनाब, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इस प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं।

और जब इंसान का दिल बात कर रहा हो तो किसकी हिम्मत है कि सुनी अनसुनी कर दे। यकीनन इस वक्त आप अपने आप से बात कर रहे हैं। और क्या हुस्न इत्तेफाक है कि आप अपने आप से बात भी कर रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। तो जनाब, सुनने वालों को हमारा सलाम।

हम हमेशा कहा करते हैं जिंदगी गुजर जाती है, गुजरती रहती है। बस कोशिश कीजिए, जिंदगी गुजारने के साथ साथ जिंदगी जीना सीखिए। ये जिंदगी मोहब्बत करने वालों की है, और ये जिंदगी उनकी है जो जिंदगी की असास को समझते हैं, और जिंदगी की असास एहसास में है। मोहब्बत करने वालों, जिंदगी तुम ही तो गुजारते हो।

کئی طرح کے تحائف پسند ہیں اس کو. مگر جو کام یہاں پھول سے نکلتا ہے

जनाब, कहने वाले कहते हैं कि जिंदगी बहार है। तो अगर जिंदगी बहार है तो आपका वजूद अपने आप में एक फूल है।

और अगर ऐसा ना हो तो फिर शायर को कहना पड़ता है कि तुझे किस फूल का कफन हम दें, कि तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं।

0: कौन ये पाताल से उभरा किनारे पर सलीम, सर फिरी मौजे अभी तक दायरों में कैद हैं।
1: जिंदगी को न बना,
0: गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये गजल शामिल की थी, आज इसे एक नए तनाजुर में सुनी। जिंदगी अगर औरों के काम आए तो जजा है, और जिंदगी अगर अपने लिए हो तो सजा से कम नहीं है। बस एक दरख्वास्त है कि आज इस गजल को रूहानी एतबार से सुनिए।

बड़ा वीरान मौसम है। कभी मिलने चले आओ, हर एक जानिब तेरा गम है, कभी मिलने चले आओ।

हमारा दिल, हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है। हमारी आंख भी नम है, कभी मिलने चले आओ।

मेरे हमराह गरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है, कभी मिलने चले आओ।

तुम्हारे रूठ के जाने से हमको ऐसा लगता है मुकद्दर हमसे बरहम है, कभी मिलने चले आओ।

0: हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है। हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है। तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ। गिसाविन, अब आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। 0501-111-000-101 पर कॉल कीजिए। बढ़ते हैं जनाब प्रोग्राम के पहले कॉलर की जाने। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी बहन, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी हाजरा हाशमी हजारा से बात कर रही हैं। जी हमारी बहन क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया बहन।
1: आपका नाम क्या है और आपकी शो की टाइमिंग क्या?
0: जी बहन, खाकसार को मुश्तबा हैदर कहते हैं और जुमा और हफ्ता दो दिन प्रोग्राम है, 2 से 4।
1: मेरे भाई आपने मेरे दिल के तारे ला के रखी।
0: जी बहुत शुक्रिया हमारी बहन। आप कोई कलाम सुनाना चाहेंगी? अरे वाह, सुभान अल्लाह। जी इरशाद। अगर आप नाराज ना हो तो हम कुछ अर्ज कर सकते हैं? जरा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा जी, जी ज़रूर। और कुछ सुनाना चाहेंगी?
1: पर मुझ में हिम्मत नहीं है।
0: अच्छा, हिम्मत क्यों नहीं है बहन? चलिए आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। हजारा से हमारी बहन ने फोन किया और बहनें तो हजारों में एक होती है ना।

0: क्या कहने, क्या
1: तो
0: कहने?
1: जनाब
0: आप शो बेमिसाल शो और कमाल किस्म का शो के मैं यकीन जाने का दूसरी दफा आपके शो में आया हूँ और मेरी हाजिरी को भूल फरमाइएगा
1: जी। जरूर क्यों नहीं,
0: आप जब आपके जलवे हमें बेकरार करते हैं तो आपके दर पर दस्तक देने आ जाते हैं, हमारी हाजिरी को भूल करना।
1: अच्छा इश्तियाक साहब, आपके आने का हमें हर चंद के इश्तियाक रहता है, लेकिन आप ना प्रोग्राम का मिजाज बदल के रख देते हैं।
0: बहुत शुक्रिया, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि माशाल्लाह तो क्या कमाल का शो, मैं यकीन जाने के मेरी पता नहीं क्या क्या दर्द भरी आवाजें और आप जो शायरी कर रहे हैं मेरी, असल में मैं दुखिया सा बंदा हूँ, बीमार बंदा हूँ और मेरे जब मेरे आंसू बहाते तो मैं अभी यकीन जाने आप बातें कर रहे तो मेरी आंखें अश्क बहार हो रही थी।
1: सही,
0: यकीन जाने कि आपकी आवाज में इतना दर्द भरी आवाज है आपकी और इतनी मिठास और दर्द भरी आवाज के मैं जितनी भी तारीफ करूं मेरे ख्याल के मुताबिक कम होगी।
1: इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया।
0: और मैं आपको ये भी आपसे बात की थी कि मैं थोड़ा सा गुनाना भी चाहता हूँ इसके अलावा मैं सिगरेट भी थोड़ा बहुत, तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर आपकी नजर करने के बाद मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, अगर इजाजत देते हो।
1: जी आपने जरूर,
0: बहुत शुक्रिया। तो ये जो गाना है ना, ये आप गजल है, ये मैं अपनी सदफरानी की नजर और इसके अलावा हमारी कार ये बेटी है जी, बड़ी प्यारी बेटी है वन की, ये अपना जहरा नूर की नजर करना चाहता हूँ और आपकी नजर करना चाहता हूँ खुशी तौर।
1: सही,
0: तो पहले शेर आपकी नजर करूंगा, शेर है कि आया ही था ख्याल की आंखें छलक पड़ी, आया ही था ख्याल की आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे।
1: वाह,
0: बहुत शुक्रिया। तो ये गुनगुना रहा हूँ आपकी इजाजत से और मैं यकीन जाने कि मैं कुछ भी नहीं, रेडियो के जितने बंदे हैं मैं तमाम को उस्ताद कहता हूँ और मेरे उस्ताद मोहतर, मैं आपने सुना होगा कि एक दफा मेरी आवाज सुनी होगी, नाम सुना होगा और मेरी बेटी भी जो है शायद वो भी उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं इनका मैं जो लकब रखा है कमांडर वन वन बेटी सदबरान।
1: सही, सही।
0: तो हाँ जो गुनगुनाऊ इजाजत है
1: जी,
0: ये बहुत शुक्रिया। आप क्या क्या अंदाज जी, क्या मैं आपकी खातिर में बीमार भी हूँ लेकिन मैं इस शो की खातिर बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ बड़ी देर से
1: जी, इरशाद कीजिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह, क्या कहने,
0: बहुत शुक्रिया।

दिन आंसू बहाना याद है हमें तो आज तक अशकी को जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको आज तक अशकी को वो जमाना है याद चुपके ये है वो जमा बेटा ये आपकी नजर है ये लाइन चोरी चोरी मिले थे जिस जगह वो याद है चोरी चोरी मिले थे हम जिस जगह वो याद है चुपके रात दिन आंसू बहा

0: वाह वाह वाह, क्या कहें क्या कहें।
1: जाबे वाला मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे में मैं आपको बता देता हूँ, 88.6 में मैं सिंगर हूँ, 88.6 पंजाब पुलिस रेडियो में, और मैं मावन प्रोग्राम भी हूँ।
0: वाह
1: बहुत शुक्रिया। तो मैं असल में मैं यकीन जाने में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपको उस्ताद मान रहा हूँ, मैं सबको उस्ताद मानता हूँ, आज मेरे भी आप उस्ताद हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं,
0: लेकिन हम तो समझते हैं कि आप उस्ताद हैं माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम में फोन किया।
1: मैं खुशी से कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ो अंदाज और आपका बोलना, आपका लहजा, और आपने तो कूदे में समुंदर ही बंद कर दिया बेटा।
0: जनाब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की।
1: तो मैं शो आपका पक्का तौर पर सुनूंगा, और मैं भी साथ दूंगा आपका, और दरमियान में कभी कभी हमारा जिक्र भी कर देना, ताकि मैं जागता रहूं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुज्तबा हैदर जिंदाबाद, वेलकम बिस्मिल्लाह।

0: अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, कौन है हमारे साथ? कहाँ से?
1: मदीन लगारी साकार मिले
0: जनाब, क्या कहना चाहेंगे?
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त
0: जी, बहुत शुक्रिया। कुछ सुनाना चाहेंगे क्या?
1: फरमाइश है गाने की।
0: माफ़ कीजिएगा, आप कुछ सुना सकते हैं?
1: सुना क्या सकते हैं,
0: कुछ सुना दीजिए, कोई नज़्म, कोई गज़ल।
1: कोई ऐसी गज़ल याद नहीं है।
0: चलिए कोई बात
1: के नाम करेंगे,
0: कोई बात अच्छी अपने सुनने वालों के लिए।
1: सुनने वालों में बहुत अच्छी, आपने जो गाने करते हैं ना बहुत अच्छी लोग, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और जो सुनने वाले जो है ना उनको मेरे साथ सलाम करना चाहता हूँ
0: जी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम
2: जी। अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी, मुस्तफा भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से?
0: अल्लाह का एहसान, आप सुनाओ।
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
0: जनाब भाई जी, जनाब क्या सुनाना चाहेंगे?
2: आपको शेर ना सुनाओ छोटा सा, अगर आज भी ज़्यादा तो।
0: अच्छा।
2: चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पाँव के छालों से, चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पाँव के छालों से, कितने दूर बसा ली बस्ती दिल में रहने वाले।
0: वाह, किसी ने कहा था ना कि ये क्या के चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना।
2: क्या बात
0: जनाब, कॉल किया अपने प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा, मेरे लिए गाना डेडिकेट कर दीजिएगा। अच्छा, आपके पास मुनासिब हो तो।
0: कोशिश करेंगे।
2: प्यार का जुआ प्यार ना लो होना चाहिए, हर वे मूड नहीं खराब होना चाहिए। पंजाबी का गाना
0: है जनाब,
2: ये मेहरबानी होगी आपकी। तो तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम।
0: वो आपके इस गाने के जवाब थे ना?
2: जी जी।
0: मुनव्वर राना कहते हैं कि मोहब्बत की कसौटी पर परखिए बत वफादारी।
2: अरे वाह, अरे वाह।
0: मोहब्बत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है।
2: अरे वाह।
0: और कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको।
2: अरे वाह।
0: कहीं तुम पूछ मत लेना, ये गूंगा बोल सकता है।
2: क्या बात
0: जनाब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया।

السلام علیکم. السلام علیکم.

0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अल्लाह का एहसान है। आप बताइए बहन, आप कैसे?
1: भाई आपको कहते हो कि प्रोग्राम होता है को भी इंतजार करके आप आते हैं
0: जी? जुमे को भी प्रोग्राम होता है, हफ्ते को भी होता है।
1: सर इधर जुमे वाला तो क्या नहीं होती थी, इंतजार तो करते।
0: अच्छा चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। वो आपका बहुत शुक्रिया। वो जॉन ने कहा था ना कि वो जो न आने वाला है, हमको उससे मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा
1: मैं मर गए इश्क बीमार के यार मिला और कुछ भी। और कहने के जोर दी है बंदगी ऐ फराज, जोर दी है बंदगी ऐ फराज, क्या करे जब दो खुदा बंदे। सलामत रहें, खुश रहें, और सब सुनने वालों को अच्छा।
0: जी बहुत शुक्रिया।

0: जनाब मोहसिन जाफरी इस्लामाबाद से। जनाब मिजाज कैसे हैं आपके? जनाब जनाब क्या हमें सुनाना चाहेंगे? इरशाद। हाय हाय हाय हाय इरशाद हाय हाय इरशाद वाह वाह वाह वाह क्या कहें। अच्छा वाह वाह क्या कहें।
1: वो 16 साल भी किसी बस्ती के लोग थे।
0: वाह
1: उनकी गली में रब से हवा घूम
0: हाय हाय
1: सुनिएगा बुजुर्गा के आखिर किसी खराबे में जिंदा है और सब।
0: अच्छा
1: आखिर इसी खराबे में जिंदा है और सब। यूं कहा कोई मेरे सिवा क्यों नहीं।
0: हाय हाय हाय क्या कहें।
1: यूं कहा कोई मेरे सिवा क्यों नहीं हुआ क्या जज्बे इश्क मुझसे ज्यादा था गैर में। उसका हबीब उससे जुदा क्यों नहीं हुआ।
0: वाह
1: उसका हबीब उससे जुदा क्यों नहीं हुआ। आसिफ कलाम शाह जी शेर करता हूँ करता रहा मैं तेरे लिए दोस्तों से जंग।
0: अच्छा
1: करता रहा मैं तेरे लिए दोस्तों से जंग तू मेरे दुश्मनों से खफा क्यों नहीं।
0: हाय हाय क्या कहें।
1: तू मेरे दुश्मनों से खफा क्यों नहीं हुआ और आखिर कि जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ जानता हूँ। जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ जानता हूँ मैं जो कुछ नहीं हुआ वो पता क्यों नहीं।
0: हाय हाय क्या कहना क्या खूबसूरत कलाम है और क्या खूबसूरत अंदाज है क्या कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए बेइंतहा शुक्रिया।

0: आप जब इतना अच्छा अंदाज लेके आते हैं तो दिल खुश होता है। किसी ने कहा था ना कि शोला से लपक जाए है आवाज तो देखो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, क्या हो? ठीक हो?
0: अल्लाह का लाख एहसान है जनाब। कौन कहाँ से? जनाब खुरम साहब नू अल्लाह खुशो खुरम रखे, उनका शो कल होएगा जी 12 तो लैके 2 बजे तक।
1: सर मैंने तो सर काफी दिन ही होगा ना सर, वो उसको सैयद साहब आ गए सर पिछले जुमे में सर, वही है सर।
0: बस है देख लो फिर सैयद साहब नू, तुसी सैयद साहब कहंदे हो तो फिर ऐ भी कहंदे हो कि क्यों आंदे ने, है ना?
1: नहीं नहीं सर माशाल्लाह आउन असी है नहीं आते नहीं आ रहे सर माशाल्लाह, तुसी भी सोने आ जाइए, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे।
0: जनाब बहुत शुक्रिया, खुरम भाई का पैगाम, आपका पैगाम उन तक पहुंच जाएगा और खुरम भाई का ये पैगाम है कि वो कल आपसे मुखातिब होंगे। ठीक है
1: इंशाल्लाह सर, सलामत रहो तुसी भी, अल्लाह पाक सब नू सलामत रखे। तो माशाल्लाह जबरदस्त शो हमेशा ही करा दे कर सर, थोड़ी तो दो अखण सर, थोड़ी पूरी टीम सलूक बहुत ही जड़ता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर हो तो
0: जनाब तुसी भी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुस्तफा हैदर मान भाई क्या हाल है?
0: अल्लाह का एहसान है जनाब, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह को हाल।
0: क्या सुन रहे
2: हैं? आपकी आवाज बहुत प्यारी है
0: जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
2: बिल्कुल छूंगी आपकी आवाज।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सुनाएंगे सरकार?
2: आपको शेर सुनाऊंगा
0: इरशाद।
2: दिल अमीर था मोहब्बत पर गरीब था।
0: अच्छा।
2: अच्छे हम थे बुरा नसीब था। इतनी कोशिशें करके कुछ भी ना कर सके असद, पर चलता रहा और समझते भी करीब।
0: वाह।
2: इसका अगर जो आपके ये जिस गाने का साउंड है वो गाना जरा प्ले कीजिए ना, वो गाना चाहत है। जिस गाने का ये साउंड आप चलाया म्यूजिक, जिस गाने का आप चलाया
0: बिल्कुल ठीक है।
2: तमाम सुनने वाले को सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम।

0: जनाब प्रोग्राम की आखिरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे
0: हैं भाई आप? अल्लाह का एहसान जी। कौन है हमारे साथ? है सायरा बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी जी बहन, क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से और क्या सुनाना चाहेंगी आप?
1: प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त है, फर्स्ट टाइम सुना है, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। वैसे मैं उठी थी तो मेरा FM ऑन था, तो मैंने देखा कि शो चल रहा है।
0: बहुत शुक्रिया बहन आपने प्रोग्राम में कॉल।
1: अल्लाह ताला की ज़ात में एक आपको नज़म सुनाना चाहती हूँ। वो फजल तेरा या रब या कोई इत्तला हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मिट जाऊं मैं तो इसकी परवाह नहीं है कुछ भी, तेरी फना से हासिल घर दिल को पका हो। सीने में जोश गैरत और आंख में हया हो, लगते जिक्र हो तेरा दिल में तेरी वफा। शैतान की हुकूमत मिट जाए इस जहां से, हाकिम तमाम दुनिया पे मेरा मुस्तफा हो। और रूह मेरी सजदा में और सामने खुदा।
0: सुभान, क्या कहें,
1: लंबी
0: जिंदगी दे। सर बहन आपने प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया है और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नज़म पढ़ी है। जीती रहिए बहन।
1: अच्छा शो कर रहे, कल भी आपका शो होगा क्या?
0: जी कल, कल भी होगा।
1: चलिए इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, कल भी ठीक है।
0: कोशिश कीजिएगा कि कल भी आप FM ऑन करके सो जाइए और उसके बाद फिर आप उठ जाइए और फिर उसके बाद आप प्रोग्राम में शामिल हो जाइए।
1: दिशा भाई का शो सुना ना, तो फिर मैं सो गई थी। अब नमाज का टाइम होने वाला होता है, फिर मैं उठ जाती हूँ, तो ठीक है।
0: चलिए बहुत शुक्रिया सायरा बहन, आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। आज अपनी रविश से हट के हमने बहुत ज़्यादा कॉल्स शामिल की हैं प्रोग्राम में।

अहमद फराज कहते हैं ना, एक दीवाना यह हंसता हुआ गाता जाता, काश मंजिल से भी आगे कोई रास्ता जाता। हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, और एक वक्त वो भी होगा जब हम इस दुनिया से जाने लगेंगे। और याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, गुज़र जाती है।

वक्त इतना मसहूर कुन होता है कि इंसान को खबर ही नहीं होने देता कि कैसे गुजर गया। वक्त इतना मसहूर कुन होता है कि इंसान को खबर ही नहीं होने

माजी की तलख यादों को, और माजी की तलख हकीकतों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। अपना और उनका, जो आपके अपने हैं, उनका बहुत ख्याल रखिए।

और वो जो आपके अपने नहीं हैं उनका भी ख्याल रहे। कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपको अपनी जैसा बना ले। मुस्कुराते रहिए।

जनाब, हम दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपसे चाहेंगे इजाज़त।

जिंदगी ने वफा की, तो कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।

और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेरे फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने, तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं।

वही जिंदा को मुर्दे से निकालता और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे।

और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं, जैसे उनके कानों में सिक्ल है, तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो।

और अगर वो तेरे दर पे हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रस्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे मैं सबसे तुमको आगाह करूंगा।

और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद सात समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म ना हों। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है।